इतिहास के सफों पे दर्ज हैं कहानियां कई देशों के संघर्ष के दौर की, वो दौर जब जन्म लिया था इन देशों के राष्ट्रगीतों ने। ये राष्ट्रगीत कभी किसी राष्ट्रनायक के इर्द गिर्द लिखे गए तो कभी किसी देश के ध्वज के संदर्भ में, कहीं ये विशुद्ध प्रार्थना बने तो कभी गाए गए लोकगीत के रूप में, कहीं ये कामना है महारानी की दीर्घायु की तो कहीं है वंदना मातृभूमि की।

नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए कि आपको एक बहुत विशाल उफनती हुई और भंवरों से भरी नदी पार करनी है। किनारे पर आपको एक नाव दिखती है, लेकिन जब आप पास जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि वह नाव लकड़ी की नहीं बल्कि कागज़ की बनी हुई है। और उस कागज़ की नाव में आपके साथ 5 ऐसे साथी भी बैठे हैं जो बिल्कुल शरारती और झगड़ालू हैं। वे नाव में उछल कूद कर रहे हैं और उसमें छेद करने पर तुले हुए हैं। अब आप ही बताइए, ऐसी कागज़ की नाव और ऐसे उपद्रवी साथियों के साथ क्या कोई मुसाफिर उस पार सुरक्षित पहुंच सकता है? सुनने में यह बात अजीब लग सकती है, लेकिन सच यही है कि हम सब आज बिल्कुल इसी खतरे के बीच बैठे हुए हैं। कबीर साहब आज हमें हमारी इसी नाजुक नाव और उसके खतरनाक साथियों की असलियत दिखा रहे हैं। आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह सूत्र। कागद केरी नावरी, पानी केरी गंग। कागद केरी नावरी, पानी केरी गंग। कहे कबीर कैसे तिरूं, पंच कुसुंगी संग।

श्रोताओं, कबीर साहब मानव जीवन की क्षणभंगुरता और भीतरी विडंबन को उजागर करते हुए कहते हैं, कागद केरे नावरी, यह जो हमारा हाड़ मांस का शरीर है, यह विधाता की बनाई हुई कागद केरी नाव यानी कागज की एक अत्यंत कमजोर और नश्वर नाव के समान है, जो पानी का एक छींटा लगते ही गल सकती है। पानी केरी गंग, और जिस नदी को इसे पार करना है वह कोई शांत तालाब नहीं है, बल्कि पानी केरी गंग यानी वेग से बहती हुई गहरी और अनंत लहरों वाली संसार रूपी गंगा है, जहाँ पर पल माया के भंवर उठ रहे हैं, जहाँ पर हर पल माया के भंवर उठ रहे हैं। इस भयानक यात्रा की सबसे बड़ी चुनौती को अगली पंक्ति में रखते हुए कबीर पूछते हैं, कहे कबीर कैसे तिरूं। कबीर पुकार कर कहते हैं कि हे परमात्मा, मैं इस भवसागर को कैसे तिरूं। पंच कुसुंगी संग, क्योंकि इस नाजुक नाव में मेरे साथ पंच कुसुंगी यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी पांच ऐसे कुसंगी और कपटी साथी सवार हैं, जो हर पल इस नाव को डुबोने की साजिश कर रहे हैं। जब नाव भी कमजोर हो और साथी भी दगाबाज हो तो पार उतरना कैसे संभव है। यह दोहा देह की अनित्यता और षडरिपु का महाविश्लेषण है। कागज का नाव प्रतीक है हमारी देह का, जिसकी कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है। एक सांस छूटी और नाव जलमग्न हो गई। पंच कुसुंगी हमारे ही पांव मूल विकार हैं, हमारे ही वे पांच मूल विकार हैं जो मन को बहिर्मुख बनाकर लगातार इंद्रियों के भोगों की तरफ धकेलते हैं। कबीर यहाँ समझा रहे हैं कि अपनी व्यक्तिगत ताकत या केवल इस नश्वर शरीर के भरोसे कोई भी जीव इस भवसागर को पार नहीं कर सकता। इस कागज की नाव को डूबने से बचाने का केवल एक ही तरीका है, सद्गुरु रूपी कुशल मांझी की शरण और उस राम नाम का सहारा, जो कागज को भी पत्थर की तरह अटूट और जल प्रतिरोध बना देता है। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा शांत होकर अपनी इस देह और अपने साथियों को देखिए। हम सब नश्वर शरीर के साजो सामान रूप रंग और झूठी शान शौकत पर कितना घमंड करते हैं। हम भूल जाते हैं कि यह नाव कागज की है और नदी बहुत गहरी है। ऊपर से हमारे भीतर के ये पांच कुसंगी, हमारा गुस्सा, हमारा लालच, हमारा अहंकार, रोज इस नाव में कलह का छेद कर रहा है। आज कोशिश कीजिए इन पांच कुसंगियों की पहचान करने की। इनके बहकावों में आकर अपनी नाव को मत डुबोइए। अपने जीवन की पतवार उस सद्गुरु और उस राम नाम के चरणों में सौंप दीजिए। जब परमात्मा आपकी आपका मांझी बन जाएगा तो वह कागज की नाव भी इस पूरे भवसागर को खेल खेल में पार कर जाएगी। आप परम शांति के तट पर पहुंच जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। अगर पिछली कड़ी को देखें, हमने बात की थी कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसे हमारे बिलीफ सिस्टम्स हैं जो हमारी हैप्पीनेस हमारे साथ नहीं रहने देते हैं, और उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर आया था स्ट्रेस, जो आज जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन चुका है जिसे हम मानने लगे हैं कि वो नॉर्मल है। लेकिन क्या वो नॉर्मल है? और जब हमने बहुत सी बातें देखी तो हमें समझ में आया कि यही बिलीफ सिस्टम है जिसके चलते हम खुश नहीं रह पाते हैं। तो आज थोड़ा सा और देखते हैं कि स्ट्रेस से जुड़े कैसे कितने बिलीफ सिस्टम्स हैं जिन पर चलते हुए हमने अपनी हैप्पीनेस को खो दिया है। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। जो कल हमारी बातचीत हो रही थी उसमें अगर पिछली कड़ी को देखें तो एक बहुत बड़ा मुद्दा आया, इसीलिए बहुत से कॉल्स भी कल हमारे पास आए कि ये जो स्टूडेंट लाइफ को लेके ही या बच्चों के एजुकेशन को लेके हमने कहा था कि एग्जाम्स के दौरान जो होता है वहीं सबसे ज्यादा स्ट्रेस दिखाई दे रहा होता है, क्योंकि अपनी नॉर्मल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में मैंने एक्सेप्ट किया हुआ है, यू नो नॉर्मल अपने रिलेशनशिप्स में भी मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन बच्चों का जब फैक्टर आता है एग्जाम्स का, उसमें इतना क्लियरली विजिबल हो जाता है, क्योंकि उसके रिजल्ट्स कई बार बहुत घातक जब हो रहे हैं।
1: जैसे मेरी प्रोफेशनल लाइफ में अगर कोई स्ट्रेस है, मैं उसको अपने तक ही रखती, यू नो, मेरी पर्सनल में कुछ अंदर कॉम्प्लेक्स चल रहा, मैं उसको अपने तक ही रखती हूँ। लेकिन जब घर में बच्चे का एग्जाम है, वो एक घर में, वो एक माहौल में आ जाता है, इसलिए वो शायद ज़्यादा ऑब्वियस दिखता है कि, क्योंकि इट्स समथिंग जो हर एक फैमिली मेम्बर, पेरेंट भी, बच्चा भी, छोटे भाई बहन के ऊपर भी, क्योंकि यू सी अगर बड़े का टेंथ है तो छोटे के ऊपर ऑटोमेटिकली बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, एंड प्लस सारे पेरेंट्स की अटेंशन भी एक पर ज़्यादा चली जाती है। बहुत सारे सी अ चाइल्ड, अ यंगर चाइल्ड विल आल्सो गो थ्रू अ लिटिल बिट ऑफ निग्लेक्ट कि मेरी तरफ तो कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो तब इसलिए कहते कि लगता कि सबका एग्जाम है घर के अंदर। इसलिए भी एग्जाम एक ऐसा वो है कि यू नो पूरा घर, पूरा परिवार उसको एक्सपीरियंस करता, तो वो एक बहुत बड़ी फिर फीलिंग आती है कि दिस इज स्ट्रेस। बाकी सब में देर इज लॉट ऑफ स्ट्रेस इंटरनली दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग, but we probably you know don't realize it because it doesn't hit everyone in the family equally,
0: or in fact wo hit to kar raha hoga lekin wo different you know direct nahi kar raha hai, is par hum baat karenge. lekin isme jo kal baat jo pichli kadi mein nikal ke aayi thi wo tha wo formula, you know, agar hum stress ki baat karte hain to stress is equal to pressure upon my inner strength, you know, so मेरी इनर स्ट्रेंथ इसमें और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है।
1: इनर स्ट्रेंथ ही इसमें इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज दिन तक हम प्रेशर्स को ब्लेम करते आए कि कंपटीशन बढ़ रहा है, सिलेबस बहुत बढ़ रहा है, सिलेबस को चेंज कर दो ताकि बच्चों का स्ट्रेस खत्म हो जाएगा।
0: अच्छा, और पिछले
1: ग्रेडिंग सिस्टम को, या ग्रेडिंग सिस्टम
0: को हुआ भी है चेंज।
1: सो यू सी फोकस सारा किस पर है, व्हिच इज ओके, डू लेट्स डू व्हाटएवर फॉर द एजुकेशन सिस्टम, लेकिन फोकस सारा किस पर है कि ये प्रेशर, ये न्यूमरेटर अगर कम होगा तो स्ट्रेस कम हो जाएगा। डेफिनेटली न्यूमरेटर कम होगा तो स्ट्रेस कम हो जाएगा, लेकिन न्यूमरेटर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि मेरे कंट्रोल में नहीं है, एंड अगर जो चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं है उसी के ऊपर मैं सारा अटेंशन दूँ तो मेरा स्ट्रेस और भी बढ़ता है, क्योंकि वो मेरे कंट्रोल में नहीं और मैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश करूँ। तो जब भी कोई परिस्थिति आती है, 10% न्यूमरेटर प्रेशर, 90% डिनोमिनेटर इनर स्ट्रेंथ। तो 10% यस मेरे कंट्रोल में नहीं, लेकिन 90% मेरे कंट्रोल में है, लेकिन हम वो 90% को इग्नोर करके उस 10% के ऊपर ही सारा देते। तो राजयोग जब हम सीखते तो वी वेरी क्लियरली अंडरस्टैंड प्रेशर है, रहेगा, बढ़ता भी जाएगा जैसे जैसे परिस्थितियां चेंज होंगी। न्यूमरेटर को हमें बढ़ाना है और बहुत तीव्र गति से बढ़ाना है। सी अगर सिचुएशंस बहुत फास्ट चेंज हो रही है तो डिनोमिनेटर को क्या करना होगा, उससे भी ज्यादा फास्ट स्पीड से हमें अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना।
0: इनफैक्ट वी शुड स्टार्ट एंटीसिपेटिंग, यू नो, कि क्या क्या हो सकता है।
1: नो नो, आप और फियर क्रिएट करोगे वो एंटीसिपेट करके
0: अपने अंदर, यू नो, लाइक अपने अंदर।
1: नो, सी अगेन, ये कैसे वर्क नहीं करेगा, जैसे अर्थक्वेक आया, ठीक है, तो अर्थक्वेक जो गुजरात में हिट हुआ तो बहुत नुकसान हुआ, तो उसके बाद सारा फोकस गया कि अर्थक्वेक की प्रिपरेशन होनी चाहिए, बिल्डिंग्स को क्या ध्यान रखना चाहिए, वो सब, विच इज ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन उसके बाद फिर सुनामी आ गया, एंड वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द सुनामी, वी हैड प्रिपेयर्ड फॉर द अर्थक्वेक. सो हम सिचुएशन स्पेसिफिक अपनी प्रेपरेशन नहीं कर सकते हैं कि ये सिचुएशन आएगी तो मुझे कैसे फेस करना है. मुझे सिर्फ स्ट्रांग रहना है और बहुत स्ट्रांग बनना है ताकि कोई भी सिचुएशन आ जाए, फिर वो चाहे
0: तभी वो डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया.
1: एग्जैक्टली, इट्स नॉट अर्थक्वेक मैनेजमेंट, इट्स नॉट, इट इज डिजास्टर. एनी डिजास्टर इट हिट्स यू, यू शुड बी एबल टू फेस इट. तो उसमें भी डिजास्टर मैनेजमेंट ना करके हम सेल्फ मैनेजमेंट करते, कि सेल्फ मैनेजमेंट हो जाए तो कोई भी डिजास्टर आ जाए यू आर एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि आपको ही तो क्रॉस करना है. तो इसलिए डिनोमिनेटर इनर स्ट्रेंथ पर फोकस करेंगे, आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे, परिस्थितियां वही है, कंपटीशन वही है, लेकिन आपका स्ट्रेस फैक्टर कम होता जा रहा है.
0: तो शिवानी, यहाँ एक मेल में हमारे पास आया है जिस पर मैं बात करना चाहती हूँ इसी को लेकर, कि एक पेरेंट का मेल है कि हमने पूरा एटमॉस्फेयर जो है वो कंफर्टेबल रखा हुआ है और सारी चीज़ें जो होनी चाहिए वो की हुई हैं, लेकिन मुझे अपना फियर है, तो क्या वो मेरा फियर भी पहुंच रहा है? उस फियर को मैं कैसे ना पहुंचने दूं, यू नो, बच्चे तक? दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि हम अपनी तरफ से, क्योंकि इतना इसके ऊपर चर्चा हो चुकी है, हर चैनल, हर अखबार जो है, हर हेल्पलाइन इसी पर बात करती है कि क्या किया जाए, तो उसको करने के लिए हम बच्चे को रिलैक्स करने के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन वो जो एबनॉर्मलिटी है, एंड देयर वाज दिस मेल इट सेड कि मेरे को रियलाइज हो गया कि मैं इतना कुछ उसे रिलैक्स करने के लिए कर रही थी लेकिन मैं एबनॉर्मल थी.
1: हम रिलैक्स करने के लिए, इट्स वेरी गुड कि हम रियलाइज कर रहे हैं कि हमें रिलैक्स करना है, लेकिन हम बाहर तो सब कुछ कर रहे हैं कि एक बहुत अच्छा वातावरण बना रहे हैं जिसमें बच्चा बहुत कंफर्टेबल होगा, लेकिन अगर फियर क्रिएट हो रहा है तो वो वाइब्रेशन है. तो फिजिकल रिलैक्सेशन एक छोटा सा पार्ट प्ले करते, लेकिन मेंटल रिलैक्सेशन वो बहुत इम्पोर्टेंट है. एंड मेंटली रिलैक्स होना मीन्स नो फियर. सी, हम फियर कैसे नहीं क्रिएट करें? हम किस चीज़ का फियर क्रिएट कर रहे हैं कि सपोज नहीं सक्सेसफुल हुए ये, फिर हमने उसके पीछे पीछे अपनी थॉट्स को देखते जाएं कि हमने सक्सेस के डेफिनेशन किस पर रखे थे, 95% मार्क्स, तो देन वी आर ट्राइंग टू से अगर 95 नहीं आए तो ही इज़ अ फेलियर. एंड ये हम एंटिसिपेट कर करके हम फियर क्रिएट कर रहे हैं, और जो हम फियर क्रिएट करेंगे वो मुझे इमोशनली ड्रेन आउट करता, मेरे बच्चे को बहुत इमोशनली वीक करता है. व्हाट वी नॉट रियलाइजिंग, बच्चा अभी बड़ा हो रहा है, यू नो, राइट फ्रॉम वो जो स्कूल एडमिशन एज टू वट एवर 10th स्टैंडर्ड. जैसे एक बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट होती है, बच्चे की एक इमोशनल डेवलपमेंट भी तो हो रही है. अब इस इमोशनल डेवलपमेंट की स्टेज में हम कौन सी एनर्जी सारा दिन देते हैं? अगर उस बच्चे को नेगेटिव एनर्जी, फियर की, इनसिक्योरिटी की मिलेगी, विल दैट चाइल्ड ग्रो अप टू बी अ स्ट्रॉन्ग चाइल्ड? हमें आज अगर हम देख रहे हैं कि आज के कॉर्पोरेट सेक्टर में इमोशनल इंटेलिजेंस इज समथिंग विच इज लुक्ड फॉर, गो 20 years back एंड वो था इंटेलिजेंस क्वेश्चन देखा जाता था, उसका एप्टीट्यूड टेस्ट होता था. आज हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इमोशनल स्टेबिलिटी का टेस्ट लिया जाता है. क्यों? देर इज अ शिफ्ट ना, कि ठीक है, अब तो बहुत सारे लोग हैं जो IIT से आ रहे हैं, IIM से आ रहे हैं, बट वी वॉन्ट वो लोग जो स्टेबल हैं. तो अब अगर कॉर्पोरेट सेक्टर का, जिसके लिए आप अपने बच्चे की तैयारी कर रहे हैं, जब उनका फोकस इमोशनल स्टेबिलिटी पर आ गया है, तो ये इमोशनल स्टेबिलिटी कौन क्रिएट करेगा बच्चे के अंदर? हमें क्रिएट करना पड़ेगा. हमारा बच्चा सक्सेसफुल जीवन में तभी हो पाएगा अगर वो इमोशनली स्टेबल है. हम इतना फियर, इतनी एक्सपेक्टेशंस का भी प्रेशर क्रिएट कर देते कि बच्चे उस एक्सपेक्टेशंस के प्रेशर के कारण भी परफॉर्म नहीं कर पाते. यू नो, अगर हम अपने बच्चे को कह पाते कि यू स्टडी हार्ड एंड देन व्हाटएवर हैपेंस आई एम फाइन विद इट, जितने भी आपके मार्क्स आए आई एम फाइन विद इट, बट प्रोवाइडेड आप अपना बेस्ट एप्टीट्यूड उसके अंदर लगा दो.
0: आई डोंट थिंक देयर इज एनी पेरेंट जो ये नहीं कहता होगा.
1: नहीं, हम ये सोचते हैं कि अगर हम ये कहेंगे कि आपके जितने भी मार्क्स आएंगे आई विल बी फाइन विद इट, तो हमें लगता है कि फिर बच्चे के ऊपर तो कोई प्रेशर नहीं डेवलप हो रहा.
0: सिस्टर शिवानी, मैं इसी पे आना चाहती थी. मैक्सिमम पेरेंट्स यही कहते हैं कि आप जो भी आएगा, यू आर माई चाइल्ड, आई एक्सेप्ट यू, आपके हम मुझे कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं है, आप अपना काम करते रहो. और मैक्सिमम पेरेंट्स से जब बात करो,
1: सिर्फ बोलने के लिए या सोच में भी. सी, बोलने वन थिंग इज कि आप ये बोल रहे हैं, लेकिन इंटरनली तो आपकी सोच और आपकी आपस में जो कॉन्वर्सेशन है, क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो बच्चा बहुत ज्यादा स्ट्रेस के अंदर है, तो आप चाहते हो कि उसको यू नो रिलैक्स करो, तो हम कहते हैं कि कोई बात नहीं तुम पढ़ो. लेकिन क्या हमारी सोच वही है? हमारी सोच में क्या है? आई मेट वन गर्ल हु इज इन द 12th स्टैंडर्ड. तो उन्होंने कहा कि मेरे घर में बहुत मेरे ऊपर प्रेशर है कि आपको IIT से क्लियर करना है एंट्रेंस एग्जाम. तो कहती जैसे ही घर पहुंचती हूँ ना तो मेरे फादर शुरू हो जाते हैं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो. एंड शी सेइंग अब मैं एक्चुअली एक डिप्रेशन की स्टेज एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि अब मैं जितना पढ़ती थी ना मेरे से उतना भी नहीं पढ़ा जा रहा है, क्यों मैं एकदम वो हो गई हूँ सुन सुन के. हाँ एंड शी सेज पता है मेरा स्कूल के बाद घर जाने को दिल नहीं करता कि जैसे ही घर जाएंगे ना तो वो शुरू हो जाएंगे. तो आई जस्ट थॉट के वी विल मीट हिज मीट हर फादर. तो उनके फादर से मिले तो आई जस्ट सेड कि आई सेड भाई साहब वी अंडरस्टैंड कि आपकी बहुत यू नो अच्छी भावना है बच्चे के प्रति, लेकिन कई बार थोड़ा सा देख लेना चाहिए कि बच्चे के ऊपर क्या इफेक्ट पढ़ रहा है. सो ही जस्ट रिएक्टेड लाइक दैट. ही से तो आपका क्या मतलब है? नहीं बोलूं, नहीं बोलूं उसको पढ़ने के लिए? 6 महीने में फिनिश हो जाएगा, ये 6 महीना है मेरे को सिर्फ
0: आपकी जिंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट,
1: ये मेरे पास सिर्फ 6 महीना है उसके ऊपर वो प्रेशर बिल्ड करके उससे वो क्लियर करवाने का. अगर ये 6 महीना मैंने नहीं बोला नहीं करवाया एंड इफ शी डजंट क्लियर देन वॉट. बट वी आर नॉट रेडी टू सी कि वो जो मैं बोल रहा हूँ, वो जो मैं एनर्जी दे रहा हूँ, उसका उस बच्चे पे क्या इम्पैक्ट. बिकॉज वो गर्ल के तो फेस पे विजिबल था. आई डोंट नो व्हाई द पेरेंट कांट सी इट कि उसके फेस पे विजिबल है कि वो एकदम ऐसी स्थिति में चले गए.
0: प्रेशर यू नो. अनदर थिंग व्हिच आई वांट टू टॉक अबाउट इफ वी आर रियली टॉकिंग अबाउट दिस इशू इज कि डू द पेरेंट्स और टीचर्स रियलाइज कि हो क्या गया है इन सिर्फ 2 सालों में? हम उन्हें मशीन बना देते हैं. आई मेट अ मदर, वो कहती है मैं नहीं चाहती हूँ. उनका बेटा आता है 3 बजे स्कूल से वापस, अभी 11th में है. 3:30 बजे वो चला जाता है इतनी दूर, आई थिंक 15 किलोमीटर गाड़ी उनके साथ जाती है कि वो कुछ क्लासेस ज्वाइन की हुई हैं IIT की में एडमिशन के लिए. अभी 12th में तो वो बाद में आएगा. वहाँ पे वो 3:30 बजे निकल के 4:30 पहुँचता है, 7:30-8 बजे वापस आता है. हर रोज़ का उसका स्केड्यूल है. उसके बाद स्कूल में भी उसका एक कोचिंग का पैटर्न है जिसको वो अटेंड नहीं कर पा रहा. सैटरडे संडे वहाँ जाना होता है. तो शी ओनली सेड कि मैं परेशान, क्योंकि मदर को उसके साथ ही सारा काम छोड़ के पूरे 2 साल उन्होंने इस पे लगाया है. आई डोंट अंडरस्टैंड, शी सेड बिकॉज दिस इज व्हाट माय यू नो सन वांटेड. बट डू वी रियलाइज हम कई बार बच्चे के साथ भी तो काउंसलिंग नहीं कर पा रहे, उसको हम समझा नहीं सकते क्या?
1: अब बच्चा क्या करियर चूज करना चाहता है या फैमिली ने क्या डिसाइड किया आपस में, दैट ऑफकोर्स ईच वन विल डिसाइड फॉर themselves. उसके लिए क्या एफर्ट करना है वो भी शायद नीड ऑफ द आवर है कि एफर्ट बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है. लेकिन उस चीज़ के साथ साथ सिर्फ इधर ध्यान रख लें क्योंकि जितना ज़्यादा आपको एफर्ट करना पड़ रहा है, जैसे आपने कहा वीकडे भी सुबह से रात तक, सैटरडे संडे भी सुबह से रात तक.
0: What do you think, Sister Shivani, actually, और ये बहुत बच्चे गुजर रहे हैं. आई थिंक टुडे वी रियली नीड टू टेक अ पॉज. मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ उसके उस बच्चे पे जो ऐसे इससे जा रहे हो, और बहुत सारे बच्चे कहते हैं हमें इतना मेंटल परसिवरेंस है हम कर लेंगे, और वो सिर्फ 17-18 साल के जो बच्चा है जो जिसपे खाने का भी उनका जो हालत हो चुकी होती है और जिस तरह से वो पूरा उनका लाइफ स्टाइल हो चुका होता है. आई जस्ट वॉन्ट टू नो वॉट इज गोइंग टू हैपन टू दीज चिल्ड्रन जब ये आगे बड़े भी होंगे, और इनका फिजिकल क्या बर्नआउट नहीं होगा?
1: No, see what happens, इस एज ग्रुप में हमारे अंदर स्टैमिना बहुत है, फिजिकल भी बहुत स्टैमिना है, मेंटल भी बहुत स्टैमिना है. लेकिन आप इसलिए हमें लगता है कि 1 साल की तो बात है ना, लेट मी जस्ट गिव इट, क्योंकि अगेन ये एक यू नो जो वर्डिंग्स हैं वो है इस 1 साल पर तुम्हारी पूरी जीवन
0: की
1: यू नो निर्भर करती है. हमने ये नहीं सोचा हमारी जिंदगी बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करती है. बट चलो कोई बात नहीं, इवन देन इफ दिस 1 ईयर हैज़ एवरीथिंग, put in your best, whatever you want to do, but then equally take care. See, अगर आप इस शरीर से और इस मन से इतनी मेहनत करवा रहे हो तो साथ साथ उतना ही ज़्यादा आपको उसका ध्यान देना पड़ेगा कि फिजिकली तो फिर भी आई थिंक वी मस्ट बी लुकिंग आफ्टर आर सेल्व्स, लेकिन मेंटली आई डोंट थिंक वी लुकिंग आफ्टर आर सेल्व्स. क्योंकि जितना ज़्यादा हम ये एफर्ट कर रहे होते हैं उतना ज़्यादा हम उसके फ्यूचर के साथ अटैच्ड भी हो गए हैं कि जहाँ मैंने इतना एफर्ट किया है तो उसका रिजल्ट तो
0: आना
1: है. अच्छा होना ही होना है, रिजल्ट अच्छा ही होता है. लेकिन फिर कुछ एक केसेस में जहाँ रिजल्ट नहीं उतना फेवरेबल होता तो हम उसके लिए रेडी नहीं थे क्योंकि वो हर दिन, दिन और रात मेहनत करना बहुत अच्छी बात, लेकिन मेहनत के साथ साथ उस रिजल्ट के साथ पहले ही अटैच हो जाना कि ये होना ही है, आपका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होना ही, मतलब देर इज़ जस्ट नो पॉसिबिलिटी कि आप कुछ और करने वाले हैं. वो अटैचमेंट, वो पूरा जो घर के अंदर क्रिएट हो जाता, फिर बाई चांस अगर वो नहीं होता है तो फिर बच्चे के अंदर वो ताकत नहीं, तब पता चलता कि ताकत एक्चुअली नहीं थी.
0: नहीं, यू नो वही मैं कह रही हूँ, क्योंकि आप इतने ऑलरेडी इन दो सालों में ड्रेन्ड आउट हो चुके हैं.
1: ड्रेन्ड आउट पढ़ने से नहीं होते हो, ड्रेन्ड आउट मेहनत करने से नहीं होते हो, ड्रेन्ड आउट इस प्रेशर को फेस करने का राइट तरीका नहीं है उसे. एंड अगेन वी वुड से बी इन द प्रेजेंट, रोज मेहनत करनी है, रोज पढ़ो विदाउट क्रिएटिंग ऑल दीज फियरफुल थॉट्स, क्या होगा, होगा नहीं होगा, उसका तो हो गया, मेरा क्या होगा, यू नो इसमें कंपैरिजन आता, कंपटीशन आता, ये वाली थॉट्स को अगर आप सारा डिलीट कर सकते हो, इसलिए मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है एक स्टूडेंट लाइफ में. अगर एक स्टूडेंट रोज सुबह अपना दिन ये चार्जिंग से, पॉजिटिविटी से और राइट काइंड ऑफ थॉट्स से शुरू करें, मेहनत इज नॉट डैमेजिंग, मेहनत कर सकते हैं हम, बहुत मेहनत, इनफैक्ट हम जितना करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड हमारी लीकेज नहीं कहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ एनर्जी तो उतनी ही है, उस एनर्जी को आप किस पर्पस के लिए फोकस
0: पकड़ के आप चल रहे हो, ना वो बहुत डैमेजिंग हो सकता है.
1: तो कई बच्चों का फिर ऐसे मालूम पड़ता कि अगर उनको वो रिजल्ट नहीं मिला जो जो एक्सपेक्टेड था, जरूरी नहीं होता कि फेलियर है, लेकिन जो रिजल्ट मैंने एक्सपेक्ट किया था वो रिजल्ट नहीं हुआ. दिल्ली में ये पिछले साल की बात है, देयर वाज दिस गर्ल हु केम सेकंड इन क्लास, wanted or expected to come first in class, she committed suicide. How can someone commit suicide for coming second in class? I mean, second in class, you're one of the toppers of the class. Aap class mein second aane ke liye suicide commit jis bacche ne kiya hai, uski mental state ka hum imagine kar sakte ki wo first aane ke idea se itna zyada attached the ki wo second ko face karne ki unke andar ताकत ही नहीं
0: और
1: थी.
0: वो पूरा जो एनर्जी वो ऑलरेडी उतने टाइम में हो चुके हो.
1: ओवर, इट वाज जस्ट ओवर. तो हियर द चाइल्ड प्लस द पेरेंट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वर्क हार्ड, स्टडी, फोकस, एवरीथिंग, लेकिन रिजल्ट इट्स ओके, इट्स ओके, क्योंकि अगर आप मेहनत कर रहे हो तो रिजल्ट तो अच्छा आना ही आना है. लेकिन वो फियर वाली थॉट्स अभी क्रिएट करके अपने आप को ड्रेन आउट नहीं करो, क्योंकि क्या होता है जब पेरेंट्स भी बहुत मेहनत कर रहे होते हैं बच्चे के साथ, बच्चा देखता है कि मेरा रिजल्ट पेरेंट्स के लिए बहुत मैटर करता है, यू नो फॉर ए चाइल्ड पेरेंट्स आर एवरीथिंग. जब मुझे दिखाई देता कि मेरा ये मार्क्स जो आने वाले हैं ये मेरे पेरेंट्स के लिए, यू नो इट्स बिकम लाइक लाइफ एंड डेथ, यू कैन सी द पेरेंट्स की सारी खुशी, अगेन वो खुशी वो मार्क्स के ऊपर डिपेंडेंट हो गई है, वो भी एक प्रेशर बच्चे के ऊपर क्रिएट हो जाता कि मुझे परफॉर्म करना है तो किसके लिए, अपने पेरेंट्स की हैप्पीनेस के लिए. मेरी हैप्पीनेस से ज़्यादा मेरे पेरेंट्स की हैप्पीनेस मेरे मार्क्स पर जुड़ी है. ये सारे जो प्रेशर्स है ना, ये अननेसेसरी प्रेशर है. पढ़ाई का प्रेशर है वो इतना सही है, वो फेस कर लेंगे, लेकिन ये एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर, मेरी हैप्पीनेस इस पर डिपेंडेंट है, आपकी पूरी लाइफ इस पर, ये जो प्रेशर्स हैं ये फिर वो न्यूमरेटर को बहुत ज़्यादा बड़ा कर देते हैं. एंड देन आई रियली डोंट हैव द स्ट्रेंथ to face up with it. And then we come across depression, students go into depression, nahi to student life mein depression, unheard of, student life mein diabetes, hypertension, unheard of, lekin aaj kyun, kyunki pressures bahut badhte ja rahe and coping skill koi sikha nahi raha, कोई भी नहीं सिखा रहा कि राइट थिंकिंग क्या है इसमें, कोई भी नहीं सिखा रहा कि कंपटीशन हेल्दी नहीं है, कंपैरिजन है, सभी यही सिखा रहे हैं कि कंपैरिजन करना है, कंपटीशन
0: जब तक नहीं. अगेन एंड अनदर थिंग व्हिच आई रियलाइज इज, जब उनके फादर ने कहा कि अगर मैं स्ट्रेस क्रिएट नहीं करूंगा तो वो पीक परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा, सो दिस इज अगेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम हमारा कि जब तक स्ट्रेस नहीं होगा. इवन ऑफिसेस में, मतलब अगर मल्टीनेशनल में देखते हैं तो बॉस बोलता है अगर मैं नहीं क्रिएट करूंगा, कंपटीशन नहीं क्रिएट करूंगा, प्रेशर नहीं क्रिएट करूंगा, स्ट्रेस नहीं दूंगा, परफॉर्मेंस.
1: अब ये भी एक हमें सोचने की बात है कि स्ट्रेस मतलब फियर, फियर, और हम फियर को यूज कर रहे हैं मोटिवेशन क्रिएट करने के लिए, फियर इज अ मोटिवेटर. तो फियर एक नेगेटिव एनर्जी, मोटिवेशन एक पॉजिटिव एनर्जी, तो एक नेगेटिव एनर्जी से आप एक पॉजिटिव एनर्जी कैसे क्रिएट कर सकते हो? गिव लव, गिव कंपैशन, गिव सपोर्ट, लेकिन गिविंग फियर, ताकि फियर से वो मोटिवेट हो जाए, इट विल नेवर हैपन. कभी भी ऑफिस में अगर हम देखें कि सब लोग काम कर रहे हैं तो अपना बहुत अच्छा काम करते हैं अपने आप, जैसे ही अगर कोई ऐसा सीनियर आकर खड़ा हो जाए जो हमेशा ऐसे वाला है, यू नो, बहुत ऐसे, आप देखेंगे कि सब की, you know, just things to, because we've seen lot of people, वो कहेंगे गलतियाँ तो निकालनी चाहिए, criticize करते रहोगे ना तो ये अपने आप को और भी ज़्यादा improve करेंगे. अगर इनको appreciate ही करते रहे ना सारा दिन, तो appreciate करेंगे तो इनकी performance, I mean this is thought pattern, कि अगर appreciate करेंगे तो ये तो फिर अपना best effort नहीं देंगे, ये सोचेंगे we have reached our best.
0: That's what we do with kids also. You know, we've stopped appreciating them because अगर हमने किया तो इनको फिर आगे पढ़ना बंद कर देंगे या ये कर नहीं पाएंगे आगे.
1: What we have to understand is energy का खेल है सर. Appreciate करोगे वो पॉजिटिव एनर्जी है. पॉजिटिव एनर्जी कभी भी किसी को ऐसे नहीं कर सकती है. पॉजिटिव एनर्जी हमेशा empower करेगी. And critical हो जाएंगे बात बात में, और वो भी इस इंटेंशन से क्रिटिसाइज करेंगे ना, तो अपने आप वो और ज़्यादा मेहनत करेगा, क्योंकि हम अपने बॉस की या अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस को बीट करना चाहते हैं. तो अगर वो हमारे काम में गलतियाँ निकालेंगे तो हम मोटिवेट हो जाते हैं, ये बिलीफ सिस्टम है, कि ये फिर मोटिवेट होंगे और मेहनत करने के लिए. अगर बॉस ने आके जूनियर्स को प्रेस कर दिया फिर तो वो बहुत अच्छा, बॉस खुश हो गया तो चलो व्हाट एफर्ट डू आई हैव टू पुट. वेरी वेरी, what to say, call it wrong or what, this belief system
0: doesn't
1: needs to
0: work.
1: Be checked.
0: Actually, it is not working.
1: It doesn't work. Kyunki jahan koi mehnat kar raha hai aur aap jaakar us par critical ho jate hain, aap turant uski energy ko, फिर या तो वो सामने वाले के अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो आपकी क्रिटिसिज्म के साथ, यू नो, इन्फ्लुएंस्ड ना हो जाए. लेकिन क्योंकि आज हम बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं एक दूसरे की एनर्जी से,
0: पर हम चाहते भी हैं कि वो हमारे क्रिटिसिज्म से इन्फ्लुएंस हो.
1: हाँ, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो हमारी क्रिटिसिज्म से और अच्छा करें, बट दैट्स नॉट व्हाट इज गोइंग टू हैपन. क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज डिसएम्पावरमेंट. आपको फीडबैक देना है, यस, इट इज़ नॉट कि आप काम ठीक नहीं है फिर भी आप कहेंगे कि योर वर्क इज़ परफेक्ट. लेकिन एक है काम पर फीडबैक देना और एक है क्रिटिकल एनर्जी देना, दोनों में बहुत फ़र्क है. इसलिए वर्ड्स मैटर नहीं करते, वर्ड्स के पीछे का इंटेंशन मैटर करता है. आप फीडबैक देते हुए भी किसी को एम्पावर कर सकते हो, और कई बार ये बोलते हुए भी कि हाँ बहुत अच्छा है, लेकिन यू नो, आप उसको डिसएम्पावर कर सकते हो. तो हमें सिर्फ ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा फोकस है काम पर, कि ये काम और अच्छा करे, ये काम और अच्छा करे. हमें ये याद रखना पड़ेगा काम करने वाला कौन है. जो काम करने वाला है ये शक्ति, उसको जब तक हम एम्पावर नहीं करेंगे तो काम और अच्छा नहीं होगा. हमारा रोल एज अ बॉस और एज अ पेरेंट इज टू फैसिलिटेट, टू गाइड एंड टू एम्पावर. काम वो लोग करेंगे, काम तो अपने आप हो जाएगा. जब एक सीनियर आकर खड़े होते हैं जो थोड़ा इस तरह की एनर्जी ट्रांसमिट करते हैं, तो अगर मैं सही भी काम कर रही होती हूँ ना, तो वो एनर्जी के इन्फ्लुएंस के अंदर मेरे से गलतियाँ होने लगती हैं, एंड फिर वो गलतियाँ ढूंढ लेते हैं क्योंकि उसके अंदर अब गलती आ गई. लेकिन वो गलती इसलिए हो जाती क्योंकि वो फियर मेरे अंदर क्रिएट हो जाता, क्योंकि माई पास्ट एक्सपीरियंसेस ये आए हैं, अब ये उस तरह की एनर्जी देते हैं. और उनका आना ही, खड़े होना ही, और उस, यू नो, इंटेंशन के साथ खड़े होना, इट क्रिएट्स अ वाइब्रेशन इन द रूम. एंड यू नो, मतलब आप देखेंगे कि विद द एम्प्लॉयज जो अभी तक अच्छा काम कर रहे थे, अब सडनली उनसे गलतियां हो जाती, क्योंकि स्ट्रेस मेरी परफॉर्मेंस को इन्हांस नहीं करता, वो हमेशा मेरी परफॉर्मेंस को नीचे ही लेकर आएगा.
0: लेकिन एक बात, बहुत लोग बहुत बार सोचते हैं कि जैसे ही मैं इनको प्रेज करता हूँ या अप्रिशिएट करता हूँ किसी के साथ भी अगर हम ले, तो यू नो, इनका सर चढ़ जाता है. ये शब्द बहुत बार यूज किया जाता है, एंड दिस इज समथिंग अ वेरी दैट काइंड ऑफ लैंग्वेज. लेकिन ये बात कही जाती है मैक्सिमम लोग, चाहे वो घर पे हों, चाहे वो बाहर हों, या यू नो लाइक, और डिसरिस्पेक्ट शुरू कर देंगे. जरा सा मैंने इनको ढील दी ना, ये मेरे सर पर चढ़ के बैठेंगे.
1: चलो उनके बारे में नहीं बात करते, अपने बारे में सोचते हैं. क्योंकि अगर मैं सीनियर हूँ तो मेरे से ऊपर कोई और सीनियर है, नहीं भी है तो आई कैन इमेजिन तो ना, कि कोई अगर मेरे से सीनियर हो तो मुझे क्या अच्छा लगेगा, कि वो मेरे से कैसे काम करवाए, वो मेरे से कैसे बात करे. अच्छा मैं सीनियर हूँ, बच्चा तो कभी था ना, तो जब मैं बच्चा था तो मैं क्या चाहता था कि मेरे पेरेंट्स कैसे बात करें मुझसे. क्या मेरी पर्सनालिटी ये थी कि अगर मेरे पेरेंट्स मुझसे प्यार से बात करते तो मैं उसका अनड्यू एडवांटेज ले लेता?
0: नहीं,
1: कभी भी नहीं. एंड
0: भले मैं तो अच्छा था,
1: सारे ही अच्छे होते हैं ना. नहीं, सारे ही वैसा करते. वी थिंक दैट हम ऐसा करते, बट एक्चुअली सारे ही ऐसे हैं. एवरीवन लाइक्स लव, एवरीवन लाइक्स सपोर्ट, एवरीवन लाइक्स कंपैशन. कोई मिला आज तक जो कहे मुझे क्रिटिसाइज करो तो मैं ज़्यादा अच्छा काम करूँगा? तो ये कई बार हाँ ये होता, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें आदत पड़ी है डांट से काम करवाने की. इसी तरह सामने वाले को भी आदत पड़ी है कि डांट तो पढ़नी ही है, तो हम दोनों के संस्कार थोड़े वैसे वाले हुए हुए. लेकिन आप एक बार ट्राई करके देखो कि डांट से नहीं, प्यार से ही काम करना है. भले वो काम करें, हो सकता है 2 दिन 4 दिन 1 महीना 4 महीना लग जाए कि वो पूरा जो वर्क कल्चर है उसमें एक चेंज आए, लेकिन चेंज ज़रूर आएगा. एंड अब जो काम होगा ना पूरा, एक तो सब लोग बहुत आपस में नज़दीक हो जाएंगे, क्योंकि देन यू नो देयर इज़ द राइट एनर्जी फ्लोइंग. अभी देयर वॉज नेगेटिव एनर्जी फ्लोइंग. आप किसी को क्रिटिसाइज करो फिर वो आपसे नफरत करे, तो यू नो बिटवीन द बॉस एंड द जूनियर नॉट वेरी गुड एनर्जी. लेकिन जब ये प्यार और सपोर्ट एक्सेप्टेंस की एनर्जी फ्लो करती, वी ऑल कम लाइक दिस, एंड देन हमें कोई कहेगा नहीं कि काम करो. हमारा खुद मन करेगा कि हम काम करें इनके लिए, इनकी कंपनी के लिए, क्योंकि इनकी कंपनी हम हमें अपनी लगती है. यू नो देयर इज अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस टू द वर्क. आज कॉर्पोरेट सेक्टर में कहते हैं यू शुड फील, यू नो ब्रिंग योर हार्ट टू वर्क. आप अपना दिमाग तो लेकर आ रहे हैं ऑफिस में, लेकिन अपना दिल घर पर छोड़कर आते हैं. योर बिलोंगिंगनेस इज एट होम, बिलोंगिंगनेस इज नॉट एट वर्क. व्हाई? बिकॉज दिस एनर्जी इज नॉट देयर. फिर आपको काम करवाना नहीं पड़ेगा, काम होता जाएगा. और इतनी ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, किसी से कोई गलती होगी वो खुद से आकर सच बताएंगे आपको, क्योंकि उनको पता है कि आप डांटने वाले नहीं हैं. सो दैट ट्रस्ट एंड दैट बॉन्डिंग विच विल गेट क्रिएटेड, इट जस्ट हैज टू बी सीन, एक्सपेरिमेंट एंड करके देखें.
0: एंड फिर गलतियां भी कम होंगी, क्योंकि डर नहीं होगा ना. ऑफकोर्स डर के कारण बहुत कुछ गलत होता जाता है.
1: डर के कारण एक विशेष साइकिल बनता, गलती हो जाती, फिर गलती को छिपाते हैं डर के कारण, फिर छिपाकर उसका ब्लेम किसी और पर डालते हैं. अगर बॉस ने मुझसे पकड़ लिया कि मेरी गलती हुई, मैं तुरंत बोलूंगी मेरी वजह से नहीं, उनकी वजह से. ब्लेम डाला, जैसे ही ब्लेम डाला मेरा और उस सबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप भी अफेक्ट हुआ. Whole energy flow gets affected. And agar transparency hai, I can say, yes, I'm sorry, mere se galti hui. And it's finished.
0: Or somewhere, you know, meri kabhi intention thi nahi na, to wo confidence rahega mujhe ki haan, theek hai, maine intentionally nahi kiya. Again, amazing, humne bachchon se shuru karke aaj baat jo hai, aur stress ko humne jab ye dekha ki jab jitni meri inner stability, mera inner resistance bar badhta ja raha tha, wo jo स्ट्रेस जो था वो और कम होता जाता है. इनफैक्ट जिसको हमने नॉर्मल मान के, जब हमने कहा कि जितना स्ट्रेस होगा उतनी मेरी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, तो यहाँ ये समझ में आया है कि स्ट्रेस जो था वो मेरी परफॉर्मेंस को इनफैक्ट और वीक कर रहा था, और उसके लिए मुझे स्ट्रेस को निगेट करना या निल पर लेकर आना बहुत ज़रूरी हो जाता है. सिस्टर शिवानी, थैंक यू सो मच.
1: ओम शांति.
0: अगर आपके पास कोई सवाल मन में उठ रहा है, कोई बात है, आपका हम स्वागत करते हैं. आप हमें ईमेल पर या फिर फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 01242667000, 9999344555, 9999344666, 9873666555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज इतना ही. आने वाली कड़ियों में कुछ और बातें आपके साथ शेयर करेंगे. अभी आपसे विदा लेते हैं. ओम शांति.

0: श्रोताओ नमस्ते। आचार्य विनोबा भावे के जीवनी पर आधारित प्रेम पंथ अहिंसा का इस रेडियो धारावाहिक में आप सबका स्वागत है। आज हम सुनेंगे ग्रामदान योजना के बारे में विनोबा जी के विचार।
1: प्रेम पंथ अहिंसा का।
2: ग्रामदान की योजना की बात चली तो विनोबा जी अपनी यात्रा के अनुभव को बताते हुए कहते हैं, भूदान यज्ञ में एक अद्भुत बात हुई जिसकी आशा लोगों ने कभी नहीं की थी, लेकिन मेरे मन में था कि कभी वह जरूर होगा। वह बात है गांव की कुल जमीन गांव की बनना। गांव के कुल लोग कुल जमीन का दान सर्वस्व दान दे, फिर जमीन गांव की हो और गांव वाले जैसा चाहें वैसा प्रयोग करें। मुझे खुशी है कि कई पूरे गांव दान में मिल चुके हैं। इनमें जीवन का बिल्कुल ही नया दर्शन हो सकता है। ऐसी घटना दुनिया के इतिहास में एक अद्भुत घटना गिनी जाएगी। जबकि हिंदुस्तान के लोगों ने पूरे के पूरे देहात दान में दे दिए, ऐसी बात कभी किसी ने सुनी नहीं थी। इसमें किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है और न हो भी सकता है। ऐसे काम दबाव से नहीं बनते। ऐसे गांव के गांव थाने के थाने पूरे मिल जाए तो उनमें हम ग्राम राज राम राज की योजना बना सकते हैं। उड़ीसा के कोरापुट के जंगल के लोग बिल्कुल तत्वज्ञान नहीं जानते थे, लेकिन जब उन्हें समझाया गया कि छोटे छोटे गांव का एक परिवार बनाओगे तो आपकी ताकत बढ़ेगी, तो वे समझ गए। उन्होंने समझ लिया कि मालकी छोड़ने में ही ताकत है। उड़ीसा में जो व्यापक परिणाम में ग्रामदान हुआ उससे जमीन की मालकी की जड़ें हिल गई और ग्राम राज्य किस तरह बनाया जा सकता है यह सोचने के लिए सामग्री मिली। ग्रामदान में एक नया विचार ही खुल गया। सिर्फ भारत के सामने ही नहीं बल्कि दुनिया के सामने भी एक मार्ग खुल गया। जमीन पर व्यक्तिगत मालकी खत्म होकर जमीन गांव की बनने से ग्राम स्वराज्य की राह खुल सकती है। यह विनोबा की प्रतिभा ने भांप लिया। वे फिर ग्रामदान की हिरट लगाते रहे और ग्रामदान सर्वोदय आंदोलन का प्रमुख कार्यक्रम बन गया। गांव की पूरी जमीन का करीब करीब समान पुनर्वितरण सैकड़ों गांव में हुआ, लेकिन यह चीज व्यापक होना कठिन था। इसीलिए विनोबा ने ग्रामदान की मूल भावना कायम रखकर 1963 में उसका सुलभीकरण किया, सुलभ ग्रामदान का कार्यक्रम दिया। उसी के आधार पर आंदोलन व्यापक बना और कई राज्यों में ग्रामदान कानून बने।
0: सुलभ ग्रामदान पर विचार व्यक्त करते हुए वे कहते हैं, पुराना ग्रामदान पूर्णतया समाज प्रेरणा के अनुकूल था, लेकिन वह स्वार्थ प्रेरणा के लिए उतना अनुकूल नहीं था। मैं दोनों का मेल साधने की युक्ति सोचता रहा। मुझे लगा कि पुराना भूदान छोड़ना ठीक नहीं, इसलिए जमीन के 20वें हिस्से की मांग रखे और वह जोत की जमीन हो। बाकी जमीन की मालकी वह गांव को समर्पण करे। बाकी की जमीन उसी व्यक्ति के हाथ में रहेगी और वह उसके वंशजों को मिलेगी। हमारा यह विश्वास है कि आज के जमाने में दान की जितनी प्रेरणा है उससे अधिक दान प्रेरणा आने वाले जमाने में होगी, इसलिए आगे सहज और अधिक सम्मति मिलेगी। जमीन वितरित करने के लिए तथा सामूहिक खेती करने के लिए भी लोग धीरे धीरे तैयार होंगे, लेकिन फिलहाल लोगों के मन में ग्रामदान के लिए अनुकूलता होनी चाहिए। जैसे सबको हवा और पानी चाहिए वैसे ही सबको भूमि चाहिए। ग्रामदान यानी गांव की भूमि सबकी। लेकिन आज जमीन पर व्यक्तिगत मालकी का विचार समाज में मान्य है। इस वस्तु स्थिति का स्वीकार करके ही हमें आगे बढ़ना है। सुलभ ग्रामदान में इसकी व्यवहारिक योजना की गई है। यह सब सोचकर हमने यह सुलभ ग्रामदान प्रारंभ किया। सुलभ ग्रामदान का प्रारूप कुछ इस तरह का था। गांव के कम से कम 75% जमीन मालिक जमीन की मालिकी गांव को अर्थात ग्राम सभा को समर्पण करे। वह जमीन गांव की कुल जमीन का कम से कम 51% हिस्सा हो। गांव के कम से कम 75% लोग ग्रामदान मान्य करे। जमीन मालिकी गांव को समर्पण करने वाले हर जमीन मालिक की जमीन का 5% हिस्सा भूमिहीनों में बांटा जाए। शेष 95% भूमि पुराने मालिक के कब्जे में ही रहे, वह तथा उसके वारिस उसकी काश्त करते रहेंगे, लेकिन वह बेची न जाएगी। केवल ग्राम सभा की अनुमति से ग्रामदान में शामिल ग्रामवासी को ही हस्तांतरित की जा सकेगी। काश्तकार उपज का 40वां हिस्सा तथा अन्य लोग आय का 30वां हिस्सा नियमित रूप से ग्राम सभा को दे। इसी ग्राम कोष का विनियोग गांव की भलाई तथा विकास के लिए होगा। ग्राम सभा गांव का कारोबार देखेगी, गांव के विकास की योजनाएं बनाकर अमल में लाएगी। वह सर्वसम्मति या सर्वानुमति से निर्णय लेगी। उसे सभी आवश्यक अधिकार होंगे। मैंने सुना कि महाराष्ट्र सरकार कानून बना रही है कि ग्रामदान में 51% के बदले 60% जमीन आए तभी ग्रामदान माना जाएगा। यह सिलेक्ट कमेटी का सुझाव है। मैंने कहा हमारी कोशिश तो 100% होनी चाहिए तभी ग्रामदान माना जाएगा। 60% तो सरकारी तौर पर है। लोगों का ख्याल है कि सरकार 60% मांग रही है और बाबा 51% मांग रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं। बाबा तो 100% ही चाहता है, लेकिन लोगों की अनुकूलता के लिए हमने 51% वाली बात मान्य की है। हमें करना क्या है, आंकड़े थोड़े ही गिनने हैं। हमें देखना है कि गांव में करुणा आई या नहीं। ग्रामदान में लोगों को समझाना होगा कि हमें बांटकर खाना है।
2: विनोबा जी के अनुसार ग्रामदान की योजना सामूहिक जीवन की योजना है जिसमें सारा गांव मिलकर एक साथ सम्मिलित परिवार बनेगा। भावना यह होगी कि हम सब मिलकर एक कुटुंब है। हमारे पूर्वजों ने यहाँ तक कहा था, वसुधैव कुटुंबकम, यानी सारी पृथ्वी एक कुटुंब है। वह भी कुटुंब नहीं कहा, कुटुंबकम कहा। कुटुंबकम यानी छोटा कुटुंब। पूर्वजों ने कहा कि यह वसुधा, यह दुनिया, यह पृथ्वी एक छोटा सा परिवार है। जिस देश में यह शब्द निकला उसी देश में हम एक बहुत ही छोटी चीज रख रहे हैं, वह है ग्राम कुटुंबकम, यानी गांव को एक कुटुंब माना जाए। अभी तो छोटे छोटे परिवार बने हैं, 5-7 व्यक्तियों का एक परिवार होता है। अब इस अणुयुग में, इस विज्ञान युग में इतने छोटे छोटे परिवार कैसे चलेंगे? अणुयुग का अगर लाभ लेना है, विज्ञान युग का अगर लाभ लेना है, तो सबको मिलकर एक बड़ा परिवार बनाना होगा। आज तो छोटे छोटे देश भी नहीं टिक रहे, ऐसे जमाने में छोटे परिवारों की क्या हालत होगी, कह नहीं सकते। इसीलिए ग्रामदान आज के जमाने की मांग है, युग धर्म है।
0: ग्रामदान में प्रत्यक्ष समर्पण करना है, ग्राम सभा को मातृ देवता बनाकर समर्पण करना है और उसके प्रसाद के रूप में हमारे पास जो आएगा उसका सेवन करेंगे, तो यह एक भव्य, दिव्य और रमणीय कल्पना है। पहले नारा था सबई भूमि गोपाल की, नहीं किसी की मालिकी। अब आप भूमि का स्वामित्व ग्राम सभा को सौंप रहे हैं। इस तरह एक नई मालिकी खड़ी नहीं कर रहे, जमीन परमात्मा की है और उसकी तरफ से ग्राम सभा के पास है। मालिकी ग्राम सभा की नहीं है, भगवान की है। गोपाल की सत्ता कायम है, उसकी तरफ से ग्राम सभा काम करेगी।
2: ग्रामदान का अर्थ बताते हुए कहते हैं कि सब लोग स्नेह से मिलकर जियो और सारे गांव को एक परिवार बनाओ। यह ग्रामदान का अर्थ है, आपका प्रेम गांव के दूसरे भाइयों को मिले, उनका आपको मिले। बड़ों के पास जमीन है, छोटों के पास श्रम। बड़ों के पास योजना शक्ति है, छोटों के पास तप करने की ताकत। ऐसी हालत में आप सब एक हो जाए तो सारा गांव एक परिवार बन जाएगा। लोग समझते हैं कि ग्रामदान में जमीन के मालिकों को जमीन देनी है और दूसरों को लेनी है। देने वाले के लिए तो वह धर्म हो गया, लेकिन लेने वाले के लिए क्या? समझने की जरूरत है कि जो धर्म होता है वह सार्वजनिक होता है, वह सबके लिए होता है। वह चंद लोगों के लिए लागू है और चंद लोगों के लिए लागू नहीं, ऐसा नहीं। प्रेम की जिम्मेवारी चंद लोगों पर है और चंद लोगों पर नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। गांव में मजदूर हैं, उनके पास भी देने के लिए दौलत पड़ी है, उनकी श्रम शक्ति, लेकिन वे अपने छोटे से परिवार के लिए ही श्रम शक्ति का दान कर रहे हैं और गांव से उसे चुरा कर रखते हैं। उनको समझाना है कि उनका श्रम तो तब धन्य होगा जब गांव को समर्पित होगा। जमीन के मालिकों की जमीन, श्रम के मालिकों का श्रम, बुद्धिमानों की बुद्धि, संपत्तिवानों की संपत्ति, सब की सब जब गांव को समर्पित होगी तभी सच्चा ग्रामदान होगा, यह ग्रामदान का पूरा अर्थ है। हमें ग्रामदान की पूरी कल्पना समझनी चाहिए। अभी तक तो यह चलता था कि जमीन वाले जमीन दे दे तो ग्रामदान हो गया। मैंने भी शुरू में ऐसा ही चलाया, फिर ध्यान में आया कि यह विचार गलत है। केवल जमीन देने से ग्रामदान नहीं होगा। लोगों ने कल्पना कर रखी है कि कुछ अस्थिमान और कुछ नास्तिमान है, पर एक दिन मेरे ध्यान में आया कि इस दुनिया में कुल के कुल अस्थिमान है। परमेश्वर की कृपा से नास्तिमान दुनिया में कोई नहीं। किसी के पास जमीन है, किसी के पास संपत्ति है, किसी के पास श्रम है, किसी के पास बुद्धि है, किसी के पास प्रेम है, कोई ना कोई चीज हर किसी के पास पड़ी है।
0: ग्राम दान के अंदर सिर्फ जमीन देना ही नहीं है। ग्राम दान का विकसित अर्थ है कि जिसके पास जो है वह ग्राम को समर्पण करना चाहिए। कुछ लोगों का देने का धर्म और कुछ लोगों का लेने का धर्म ऐसा नहीं हो सकता। धर्म वही होता है जो सबको लागू है। करुणा भी सबको लागू है। जिनके पास जमीन है वे अपनी जमीन गांव को देते हैं, तो ग्राम दान हो गया। जो जमीन वाले अब तक अपनी जमीन का उपयोग अपने घर के लिए करते थे, वे सारे गांव को घर समझकर अपनी जमीन का उपयोग गांव के लिए करने को तैयार हुए। यह बहुत अच्छा हुआ, लेकिन इतने से ग्राम दान पूरा नहीं होता। गांव के सम्मतिमान आज तक अपनी संपत्ति का उपयोग घर के लिए करते थे। उन्होंने अपनी संपत्ति का उपयोग गांव के लिए करने का तय किया, तो ग्राम दान बढ़ेगा। फिर भी ग्राम दान पूरा नहीं होगा। गांव के मजदूरों के पास श्रम शक्ति है। आज वे यह शक्ति अपने घर के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर वे अपने श्रम शक्ति गांव के लिए समर्पण करें, तो ग्राम दान का और एक हिस्सा होगा। यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास क्या नहीं है, बल्कि यही सोचना चाहिए कि मेरे पास देने की क्या चीज है। अगर कोई शख्स दुर्बल है परंतु पढ़ा लिखा है, तो वह अपनी सेवा गांव को समर्पण करे, विद्या गांव को दे।
2: ग्रामदान में तीन तत्व आते हैं। मालिकी विसर्जन, यह करुणा का तत्व है। वह गांव सभा को समर्पण, यह समर्पण का तत्व है। और मिलजुल कर काम, यह सहयोग का तत्व है। तीनों गहरे आध्यात्मिक तत्व है। इन तीनों सामूहिक तत्वों पर चलेंगे तो जो धर्म आज जीर्ण हुए हैं उनका उद्धार होगा। ग्रामदान में हम तीन बातें करना चाहते हैं। पहली बात यह है कि हम छोटे छोटे गांव को एक बड़ा परिवार बनाना चाहते हैं। मैं तो कहूंगा कि जो गांव परिवार नहीं बन सकेगा वह गांव ही नहीं है। गांव इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि उसका परिवार ही बन सके। दूसरी बात यह करनी है कि पैसे की सत्ता को मिटाना है। इसका मतलब यह नहीं कि पैसा कोई बिच्छू है और हम उसे छुएंगे नहीं, परंतु पैसों को मुख्य स्थान नहीं रहेगा। जीवन के बहुत से काम बिना पैसे के चलेंगे। तीसरी बात, हम अपनी जनता में आध्यात्मिक भावना बढ़ाना चाहते हैं। लोग कहते हैं कि जीवन का मान बढ़ाना चाहिए, हम कहते हैं कि चिंतन का मान बढ़ाना चाहिए। यह ठीक है कि जहां जीवन का मान बिल्कुल ही गिरा हुआ है वहां पर उसे ऊपर उठाना ही होगा, परंतु खाना पीना और मजा करना, इसी में मनुष्य का सब सुख है, यह ख्याल बिल्कुल गलत है। उसे हम हटाना चाहते हैं। इसीलिए हम आत्मज्ञान और विज्ञान दोनों को बढ़ाना चाहते हैं। हमें मानवता की भावना और अध्यात्म भावना रखनी होगी।
0: ग्राम स्वराज की बुनियाद पर वे कहते हैं कि ग्रामदान ग्राम स्वराज की बुनियाद है। ग्रामदान के बाद ग्राम स्वराज की स्थापना करने का काम आता है। गांव के लोगों को अपनी इच्छानुसार अलग अलग प्रयोग करने की सहूलियत होनी चाहिए। हमारी निर्दोष योजना लादने की अपेक्षा गांव वालों को गलत प्रयोग करने की आजादी देनी चाहिए। गांधी जी ने स्वराज्य की परिभाषा करते हुए कहा था कि स्वराज्य यानी गलतियां करने का हक। गांव को ऐसा स्वराज्य मिले। ग्रामदान के भिन्न भिन्न चित्र होंगे, लेकिन मुख्य वस्तु उसमें यह है कि उसके जरिए हम सरकारी शक्ति से भिन्न और हिंसा शक्ति के विरुद्ध ऐसी जनशक्ति का निर्माण करेंगे। सामूहिक जीवन के लिए लोगों को प्रवृत्त करना है। सबके पास देने की चीज है, अपने पास जो कुछ है उसे समाज को समर्पित करने की भावना का ही नाम ग्राम स्वराज्य है। ग्राम स्वराज्य का अर्थ है गांव में बुद्धि शक्ति तालीम आदि जो कुछ भी साधन है उन्हीं को मुख्य पूंजी समझकर उनके आधार पर गांव का निर्माण करना। बाहर से मदद मिलती है तो अच्छा है, किंतु उसी की आशा रखकर काम करने से गांव की ताकत कभी विकसित नहीं होगी। आज हमारे गांव में साधन कम हो, हमारे नसीब में गरीबी हो, तो उसे भी हम बांट ले।
2: विनोबा जी बताते हैं कि श्री एस के डे आए थे, केंद्रीय मंत्री है, उनके जिम्मे भारत सरकार का कम्युनिटी डेवलपमेंट का काम है। सज्जन व्यक्ति हैं, पहले भी मिले हैं, चर्चा की है, लेकिन इस समय चर्चा नहीं करनी पड़ी। ग्रामदानी गांव देखने गए थे, यहाँ मदुराई जिले में समझ बूझ कर ग्रामदान हुए हैं। केवल श्रद्धा से नहीं, डे साहब ने एक ग्रामदानी गांव में जाकर पूछा, क्या समझे हैं आप लोग, क्या आप भूमिहीनों को भूमि देंगे? लोगों ने उत्तर दिया, इतना नहीं समझे होते कि भूमिहीनों को भूमि देना है तो ग्रामदान क्यों करते, सबको जमीन मिलनी चाहिए। यह उत्तर सुना तो उनके आनंद का पार नहीं रहा। उसके दो तीन दिन बाद मिले तो मुझे बोलने का मौका ही नहीं मिला, वे ही बोलते रहे। मुझे जो समझाना था वही वे बोलने लगे। उन्होंने कहा कि कम्युनिटी प्रोजेक्ट में ऊपर ऊपर काम होता है, जहां कम्युनिटी ही नहीं वहां कम्युनिटी के डेवलपमेंट की योजना क्या चलेगी, जहां ग्रामदान हुआ वहां कम्युनिटी बनती है, तो वास्तव में कम्युनिटी डेवलपमेंट का काम तो ऐसे ग्रामदानी गांव में ही हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि हम चाहते हैं कि गरीबों की मदद हो, पर आज यह हालत है कि वही मदद ले सकते हैं जो अपनी शक्ति से खींच सकते हैं। गरीबों में शक्ति नहीं है कि मदद अपने लिए खींच सके, इसीलिए हमारा कम्युनिटी प्रोजेक्ट हवा में है। जहां कम्युनिटी ही नहीं वहां कम्युनिटी प्रोजेक्ट कहां से होगा, जहां ग्रामदान होते हैं वहां बड़ी भारी कम्युनिटी बनती है। यह विचार डे साहब ने रखा।
0: ग्राम भावना तो बनी, पर उसके निर्माण पर चिंता व्यक्त करते हुए जब उनसे पूछा गया कि ग्रामदान में निर्माण किस तरह हो, हमने बताया यह जो निर्माण है वह अनादिकाल से आज तक चल रहा है, लेकिन सवाल यह है कि ग्राम निर्माण में मूल तत्व क्या होना चाहिए। मूल तत्व यह है कि उसमें ग्राम खुद हो। आज तो खुद ग्राम ही नहीं है, गांव बनाना ही ग्राम निर्माण है। आज परिवार है, ग्राम है ही नहीं। एक ग्राम में अनेक परिवार होते हैं, उन सब परिवारों ने मिल करके अगर तय किया कि हम सब मिलकर गांव का एक परिवार बनाएं, तो वह ग्राम निर्माण होगा। लोग इसको ग्रामदान कहते हैं। अभी तक गांव का नाम ही था, गांव का रूप नहीं था। गांव में अलग अलग अनेक परिवार होते हैं, सब एक गांव में होते हुए भी अकेले अकेले पड़े हैं, सब मिल करके एक नहीं है। सचमुच तो गांव में सब मिलकर एक है, सबका उद्देश्य एक है, सबकी भावना एक है, ऐसा होना चाहिए। यह भावना गांव की बन गई तो मेरी राय में ग्राम निर्माण हो गया। ग्राम निर्माण हुआ यानी ग्राम हुआ, गांव बना। ग्राम निर्माण होने के बाद सुखी ग्राम कैसे बनाएंगे यह सोचना है। यह गांव वालों की अक्ल पर निर्भर है। अब सोचेंगे कि उस गांव में किस तरह से सुख की प्राप्ति हो सकती है और किस तरह दुख का परिहार हो सकता है। लेकिन एक बार गांव के बारे में मिलजुल कर सोचने लगे तो ग्राम निर्माण हो गया। गांव सुखी होगा अपनी बुद्धि शक्ति और परमेश्वर की कृपा के अनुसार। सुखी ग्राम निर्माण एक बात है और ग्राम निर्माण दूसरी बात है। सुखी ग्राम निर्माण का काम तो अनंत काल तक जारी रहेगा। यह जो ग्रामदान का विचार है वह सहजीवन का विचार है। मालिकी मिटाना, जो भूमिहीन है, कम जमीन वाले हैं, उनको जमीन देना और गांव का एक परिवार बनाना, इसमें मनुष्य की आध्यात्मिक साधना का अच्छी तरह से आरंभ हो सकता है और उसमें उसकी कसौटी हो सकती है। ग्रामदान में सामूहिक जीवन का आरंभ होगा, ग्रामदान से भौतिक जीवन सुखी होगा, यह बात साफ है। लेकिन इससे ज्यादा यह बात साफ है कि ग्रामदान से परमार्थ के लिए साफ बुनियाद बनती है।
2: विनोबा जी कहते हैं कि यह भूदान ग्रामदान हमारी दृष्टि से आत्मदर्शन की खोज है। हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि हम अपने को एक देह में सीमित समझते हैं। संसार में पड़े हुए लोगों को भी और पारमार्थिक साधना करने वाले साधकों की भी यही दशा है। संसार आसक्त मनुष्य अपनी ही उन्नति चाहते हैं और परमार्थ में लगे हुए भी अपनी ही मुक्ति चाहते हैं। एक अपनी देह का सुख चाहता है तो दूसरा अपने देहगत चित्त की शांति चाहता है। हम इन दोनों को गलत समझते हैं, कारण दोनों अपने को इसी देह में सीमित समझते हैं। मान लीजिए उसके चित्त के विकार शांत है और पड़ोसी के शांत नहीं, तो साधक को उसकी चिंता नहीं, वह अपने चित्त की ही शांति से संतुष्ट है। हम समझते हैं कि यह गलत है। जब तक हम अपने को एक देह में सीमित समझने की गलती से मुक्त नहीं होगे, तब तक हमारे लिए आत्मा का दर्शन दूर है। आत्मा किसी एक देह में नहीं, आत्मा अनेक देहों में है, उनमें से यह हमारी देह एक है। यह व्यापक संबंध जब ध्यान में आएगा तभी आत्मा का दर्शन होगा। उसका एक छोटा सा प्रयोग ग्रामदान में होता है। मेरा जो कुछ है वह सिर्फ मेरे लिए नहीं, सारे गांव के लिए है। यह आत्मदर्शन का एक सबसे छोटा और पहला सबक है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी दृष्टि में ग्रामदान आंदोलन आत्मा की खोज ही है।
0: अक्सर कहा जाता है कि घर द्वार सब कुछ छोड़ चलोगे तो यह मैं और मेरा छूटेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इस तरह भाग जाने से मनुष्य को मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति की युक्ति तो यह है कि हम अपना घर छोटा न समझे। सारा गांव हमारा घर है और हमारा जो छोटा घर हम मानते हैं वह भी सबका है, ऐसा समझे। मैं किसी का नहीं और कोई मेरा नहीं, ऐसी बातें करने से मनुष्य मुक्त नहीं होता। मनुष्य तो मुक्त तब होता है जब वह समझता है कि मैं सबका हूँ और सब मेरे हैं। अभी तक हिंदुस्तान में जिन्होंने मुक्ति के लिए कोशिश की, उन्होंने ऐसी ही कोशिश की कि मेरा कुछ भी नहीं है, इसलिए सब छोड़ कर जाना पड़ता था। लेकिन इससे जल्दी मुक्ति नहीं मिलती। मनुष्य सब छोड़ कर जाता है तो आखिर एक लंगोटी पहनना ही है, तो उसकी सारी आसक्ति उस लंगोटी में रह जाती है। मेरा मेरा चलता है तो मनुष्य आसक्त बन जाता है, कैदी बन जाता है। लेकिन मनुष्य मैं और मेरा यह सब छोड़ देगा और कहेगा कि यह सब हमारा है, मेरा कुछ नहीं है, तो वह जल्दी मुक्त हो जाएगा। इसलिए हमारे पास जो कुछ है वह सारा गांव का है, मैं भी गांव का हूँ और गांव मेरा है। ऐसी भावना जब बनती है तब मनुष्य आसानी से मुक्त होता है। ग्रामदान का यह एक बहुत बड़ा लाभ है। ग्रामदान एक अत्यंत परिशुद्ध धर्म विचार है। हम यह भी कहना चाहते हैं कि यह एक अत्यंत आधुनिक अर्थशास्त्रीय विचार है, अत्यंत परिशुद्ध वैज्ञानिक विचार है। यानी इसमें धर्म विचार, अर्थ विचार और विज्ञान विचार तीनों इकट्ठे हुए हैं। धर्म कहता है कि किसी एक को भी दुख हो तो उसके दुख में सबको हिस्सा लेना चाहिए, इसी को करुणा और प्रेम कहते हैं। यही परमेश्वर का रूप है। ग्रामदान के काम में करुणा प्रत्यक्ष प्रकट होती है। ग्रामदान से आपको अपने गांव के दुखी लोगों के दुख में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। यह है ग्रामदान का धर्म विचार। आज गांव में जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं। कुछ के पास बहुत ज्यादा जमीन है, कुछ के पास कम है, तो कुछ के पास कुछ भी नहीं। क्या किसी खेत में कुछ टीले और कुछ गड्ढे हो तो वहाँ अच्छी फसल आएगी? इसी तरह आज समाज में संपत्ति के कुछ टीले हैं और कुछ बिल्कुल भूखे दरिद्री गड्ढे। ऐसे समाज में अच्छा अर्थोत्पादन नहीं हो सकता। जिस समाज में ऐसे ऊंचे टीले और गड्ढे न होंगे, समता और सहयोग का भाव आया होगा, वही अर्थोत्पत्ति बढ़ेगी। समता का यह अर्थ नहीं कि बिल्कुल ही समान हो जाए। अंगुलियों में कुछ छोटी बड़ी जरूर होती है, फिर भी वे करीब करीब समान हैं। हर एक में अपनी अलग अलग ताकत है और सब मिलजुल कर काम करती है, इसीलिए उनसे हजारों काम बनते हैं। इसी तरह सब सहयोग करते हैं तभी कुछ काम बनते हैं।
2: विनोबा जी से प्रश्न करते हुए शंकर देव कहते हैं कि लोकशाही के विकास में जो चीज यूरोप और रशिया में सफल नहीं हो पाई, वह ग्रामदान में सर्वोदय रिपब्लिक में सफल हो सकती है। विनोबा जी कहते हैं, मुझे भी लगता है कि उसमें वह क्षमता पोटेंशियल पड़ी है, चाहे उसको सिद्ध करना पुरुषार्थ की बात हो। ग्रामदान में लोकशाही का पूर्ण विकास करने की क्षमता है, प्रत्यक्ष लोकशाही इसमें से खड़ी हो सकती है। आज तो सिर्फ प्रातिनिधिक लोकशाही चलती है। ग्रामदान में बहुत सारी क्षमता है। अब इस प्रक्रिया को सांगोपांग रूप देना वैज्ञानिकों का, संशोधकों का काम है। ग्रामदान के बाद क्या किया जाए, किस तरह आगे बढ़ा जाए, कैसी कैसी योजनाएं बने जिससे ग्रामदान की सारी संभावनाएं चरितार्थ हो, इसका संशोधन होना चाहिए। शंकर राव कहते हैं, लोकशाही का अर्थ है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, जनता के लिए, जनता द्वारा चलाया हुआ जनता का राज्य। लोकशाही का परिणाम वर्गविहीन शासन रहित समाज निर्माण में आना चाहिए। सब लोग मिलकर अपना जीवन क्रम बनाए, जीवन संपन्नता के लिए प्रयत्न करे। कुछ लोग उनके प्रतिनिधि बनकर यह सारा न सोचे, बल्कि लोग खुद सोचे, लोग खुद अपने जीवन के बारे में सोचे, खुद उसका अमल करे। लोकशाही की इस मूल अर्थ के लिए ग्रामदान में अनुकूलता दिखती है।

0: आचार में सहज संपूर्ण सहकार शक्य है। इसीलिए वास्तविक लोकशाही को विशुद्ध और मजबूत चट्टान की बुनियाद ग्रामदान द्वारा मिल सकती है, ऐसा मान सकते हैं। विनोबा जी कहते हैं, ठीक है, अन्यथा लोकशाही अल्पमत बहुमत की समस्या खड़ी करने वाली, झगड़े निर्माण करने वाली संस्था ही बन जाएगी। लोकशाही का वास्तविक अर्थ यही है कि सब एक साथ बैठे, सोचे और साथ मिलकर निर्णय करें। शंकर राव कहते हैं, अल्पमत बहुमत का प्रश्न तो पश्चिम की लोकशाही के विशिष्ट प्रकार के विकास और कार्य पद्धति के कारण आया है। वह लोकशाही का शुद्ध नहीं, विकृत रूप है। ग्रीस के नगर राज्य में यही प्रश्न नहीं था, किंतु वहां की नगर सभा में नागरिक ही बैठते थे, गुलामों को स्थान नहीं था। लोकशाही के लिए आवश्यक ऐसी हित संबंधों के समानता की इकाई ग्रामदान में मिलती है। ग्रामदान में ग्राम सभा की इकाई पर शुद्ध लोकशाही की रचना हो सकती है। ग्रामदान का यह एक मुख्य अंग लोगों के सामने आना आवश्यक है। लोगों को अगर अनुभूति होती है कि हम जो कर रहे हैं वह लोकशाही को मजबूत करने वाला कदम है, तो ग्रामदान द्वारा वास्तविक लोकशाही या लोकराज्य का उदय होगा। ग्रामदान का यह बुनियादी विचार विश्वव्यापक बन सकता है। विनोबा जी कहते हैं, यह सच ही है। मैंने एक बार कहा था, अगर हम इस संभावना को, इस पोटेंशियल को वास्तव में दिखा सके, तो हमारे इस विशिष्ट प्रयोग को देखने, उसका अध्ययन करने बाहर से लोग आएंगे।
1: क्राइस्ट ने कहा था, आई एम नॉट कम टू डिस्ट्रॉय बट टू फुलफिल, यानी कि मैं नाश करने नहीं बल्कि पूर्णता लाने आया हूँ। उसी भाषा में मैं सोचता हूँ कि हम नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद को डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं निकले, फुलफिल करने के लिए आए हैं। ग्रामदान फुलफिलमेंट यानी कि पूर्णता है। विनोबा जी इसे विश्व शांति के लिए शस्त्र मानते हैं। वे कहते हैं कि ग्राम स्वराज का यह कार्यक्रम संकट मोचन है। हम मन में आशा रखें, पूर्ण शांति की ओर हमारी तैयारी हो, पूर्ण संकट का सामना करने की। संकट की अपेक्षा न करें, पर उसकी उपेक्षा भी न करें। प्रत्येक भूदान पुत्र और ग्रामदान पत्र विश्व शांति का प्रतीक है। जिससे विश्व में अशांति होती है उससे यह उल्टी प्रक्रिया है। जिसे हम निजी वस्तु मानते हैं वह निजी न होकर समाज की है। समाज को देने के बाद जो शेष रहेगा उसका हमें उपभोग करना है। यह वृत्ति हम लोगों में बैठ जानी चाहिए। दुनिया की आज की अशांति अधिकतर आर्थिक कारणों से है। तुलसी दास जी कहते हैं, जेन के न विधि दिन्हे दान, ग्रामदान में त्याग है, समर्पण है, भूदान में दान है। दोनों दुनिया के लिए श्रेयस्कर है। ग्रामदान का कार्य सफल हो तो दुनिया के शांति के शस्त्रागार में एक बड़ा शस्त्र ही दाखिल होगा। हिंसा के शस्त्रागार में ऊंचे से ऊंचे शस्त्र बन रहे हैं। वही प्रक्रिया शांति के शस्त्रागार में होनी चाहिए। उससे दुनिया की ताकत और आशा बढ़ेगी। हमने बहुत बार कहा है कि भूदान विश्व शांति के लिए वोट है, लेकिन जब से ग्रामदान शुरू हुआ है तब से यह और आगे बढ़ा है। हम कहना चाहते हैं कि भूदान तो विश्व शांति के लिए वोट है, परंतु ग्रामदान विश्व शांति के लिए शस्त्र है। ग्राम स्वराज्य अगर सफल हुआ, 5 लाख गाँव में ग्राम सभा बनी और ग्रामीण जनता की ओर से लोग चुने गए, और जैसा मैं बार बार कहता हूँ उस प्रकार दल मुक्त सरकार और सरकार मुक्त जनता हुई, तो लोकमत से हम एक तरफा सेना विसर्जित कर सकते हैं और इसका असर दुनिया पर पड़ेगा।
0: अंत वे कहते हैं कि दुनिया आज अन्याय, उत्पीड़न और शोषण से त्रस्त है। सत्ता के शिकंजे में उसकी सांस रुंधी जा रही है। युद्ध और शस्त्रास्त्रों के अभिशाप से वह पीड़ित है। विज्ञान की जो शक्ति उसके लिए वरदान रूप बननी चाहती थी, वह आज शाप रूप बन गई है, क्योंकि विज्ञान सत्ता, संपत्ति और स्वार्थ के हाथों बिक गया है। गांधी जी ने बहुत पहले ही यह बात समझ ली थी कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी के विकास के कारण सत्ता और संपत्ति के केंद्रीकरण का रास्ता खुल जाएगा, और केंद्रित सत्ता तथा केंद्रीय संपत्ति सारी मानव जाति को अपना गुलाम बना लेगी। इसीलिए उन्होंने ग्राम स्वराज्य का उद्घोष किया। उन्होंने कहा था कि भारत को अपना विकास यदि अहिंसा अर्थात अशोषण और न्याय की दिशा में करना हो, तो बहुत सारी चीजों का विकेंद्रीकरण करना पड़ेगा। उसके बदले यदि केंद्रीकरण किया गया तो उसे कायम रखने

0: और उसकी रक्षा करने के लिए हिंसा का आश्रय लेना अनिवार्य हो जाएगा। अहिंसक समाज रचना तो स्वाश्रयी गांवों के आधार पर ही खड़ी की जा सकती है। विकेंद्रीकरण और ग्राम स्वराज्य का यह विचार मानव जाति के लिए गांधी जी की अनोखी देन है। समस्त मानवीय गतिविधियों का केंद्रीकरण विज्ञान का एक अभिशाप है। गांधी हमारे युग की इस विभिषिका से छूटने के मानव जाति के प्रयास के प्रतीक स्वरूप थे। गांधी एक व्यक्ति नहीं लेकिन अहिंसा तत्व के प्रतीक थे।
1: श्रोताओं, आचार्य विनोबा भावे की जीवनी पर आधारित इस रेडियो धारावाहिक में आपने सुने ग्रामदान योजना के बारे में विनोबा जी के विचार।
2: यह कार्यक्रम रेडियो एमगिरी 90.4 FM द्वारा प्रस्तुत किया गया।

इतिहास के सफों पे दर्ज हैं कहानियां कई देशों के संघर्ष के दौर की, वो दौर जब जन्म लिया था इन देशों के राष्ट्रगीतों ने। ये राष्ट्रगीत कभी किसी राष्ट्रनायक के इर्द गिर्द लिखे गए तो कभी किसी देश के ध्वज के संदर्भ में, कहीं ये विशुद्ध प्रार्थना बने तो कभी गाए गए लोकगीत के रूप में, कहीं ये कामना है महारानी की दीर्घायु की तो कहीं है वंदना मातृभूमि की।

जीवन। नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए कि आपको एक बहुत विशाल उफनती हुई और भंवरों से भरी नदी पार करनी है। किनारे पर आपको एक नाव दिखती है, लेकिन जब आप पास जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि वह नाव लकड़ी की नहीं बल्कि कागज़ की बनी हुई है। और उस कागज़ की नाव में आपके साथ 5 ऐसे साथी भी बैठे हैं जो बिल्कुल शरारती और झगड़ालू हैं। वे नाव में उछल कूद कर रहे हैं और उसमें छेद करने पर तुले हुए हैं। अब आप ही बताइए, ऐसी कागज़ की नाव और ऐसे उपद्रवी साथियों के साथ क्या कोई मुसाफिर उस पार सुरक्षित पहुंच सकता है? सुनने में यह बात अजीब लग सकती है, लेकिन सच यही है कि हम सब आज बिल्कुल इसी खतरे के बीच बैठे हुए हैं। कबीर साहब आज हमें हमारी इसी नाजुक नाव और उसके खतरनाक साथियों की असलियत दिखा रहे हैं। आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह सूत्र। कागद केरी नावरी पानी केरी गंग, कागद केरी नावरी पानी केरी गंग, कहे कबीर कैसे तिरूं पंच कुसुंगी संग।

श्रोताओं, कबीर साहब मानव जीवन की क्षणभंगुरता और भीतरी विडंबन को उजागर करते हुए कहते हैं, कागद केरे नावरी, यह जो हमारा हाड़ मांस का शरीर है, यह विधाता की बनाई हुई कागद केरी नाव यानी कागज की एक अत्यंत कमजोर और नश्वर नाव के समान है, जो पानी का एक छींटा लगते ही गल सकती है। पानी केरी गंग, और जिस नदी को इसे पार करना है वह कोई शांत तालाब नहीं है, बल्कि पानी केरी गंग यानी वेग से बहती हुई गहरी और अनंत लहरों वाली संसार रूपी गंगा है, जहाँ पर पल माया के भंवर उठ रहे हैं, जहाँ पर हर पल माया के भंवर उठ रहे हैं। इस भयानक यात्रा की सबसे बड़ी चुनौती को अगली पंक्ति में रखते हुए कबीर पूछते हैं, कहे कबीर कैसे तिरूं। कबीर पुकार कर कहते हैं कि हे परमात्मा, मैं इस भवसागर को कैसे तिरूं? पंच कुसुंगी संग, क्योंकि इस नाजुक नाव में मेरे साथ पंच कुसुंगी यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी पांच ऐसे कुसुंगी और कपटी साथी सवार हैं, जो हर पल इस नाव को डुबोने की साजिश कर रहे हैं। जब नाव भी कमजोर हो और साथी भी दगाबाज हो तो पार उतरना कैसे संभव है? यह दोहा देह की अनित्यता और षडरिपु का महाविश्लेषण है। कागज का नाव प्रतीक है हमारी देह का, जिसकी कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है। एक सांस छूटी और नाव जलमग्न हो गई। पंच कुसुंगी हमारे ही पांव मूल विकार हैं, हमारे ही वे पांच मूल विकार हैं जो मन को बहिर्मुख बनाकर लगातार इंद्रियों के भोगों की तरफ धकेलते हैं। कबीर यहाँ समझा रहे हैं कि अपनी व्यक्तिगत ताकत या केवल इस नश्वर शरीर के भरोसे कोई भी जीव इस भवसागर को पार नहीं कर सकता। इस कागज की नाव को डूबने से बचाने का केवल एक ही तरीका है, सदगुरु रूपी कुशल मांझी की शरण और उस राम नाम का सहारा, जो कागज को भी पत्थर की तरह अटूट और जल प्रतिरोध बना देता है। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा शांत होकर अपनी इस देह और अपने साथियों को देखिए। हम सब नश्वर शरीर के साजो सामान रूप रंग और झूठी शान शौकत पर कितना घमंड करते हैं। हम भूल जाते हैं कि यह नाव कागज की है और नदी बहुत गहरी है। ऊपर से हमारे भीतर के ये पांच कुसंगी, हमारा गुस्सा, हमारा लालच, हमारा अहंकार रोज इस नाव में कलह का छेद कर रहा है। आज कोशिश कीजिए इन पांच कुसंगियों की पहचान करने की। इनके बहकावों में आकर अपनी नाव को मत डुबोइए। अपने जीवन की पतवार उस सदगुरु और उस राम नाम के चरणों में सौंप दीजिए। जब परमात्मा आपका मांझी बन जाएगा तो वह कागज की नाव भी इस पूरे भवसागर को खेल खेल में पार कर जाएगी। आप परम शांति के तट पर पहुंच जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। अगर पिछली कड़ी को देखें, हमने बात की थी कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसे हमारे बिलीफ सिस्टम्स हैं जो हमारी हैप्पीनेस हमारे साथ नहीं रहने देते हैं, और उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर आया था स्ट्रेस, जो आज जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन चुका है जिसे हम मानने लगे हैं कि वो नॉर्मल है। लेकिन क्या वो नॉर्मल है? और जब हमने बहुत सी बातें देखी तो हमें समझ में आया कि यही बिलीफ सिस्टम है जिसके चलते हम खुश नहीं रह पाते हैं। तो आज थोड़ा सा और देखते हैं कि स्ट्रेस से जुड़े कैसे कितने बिलीफ सिस्टम्स हैं जिन पर चलते हुए हमने अपनी हैप्पीनेस को खो दिया है। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। जो कल हमारी बातचीत हो रही थी उसमें अगर पिछली कड़ी को देखें तो एक बहुत बड़ा मुद्दा आया, इसीलिए बहुत से कॉल्स भी कल हमारे पास आए कि ये जो स्टूडेंट लाइफ को लेके ही या बच्चों के एजुकेशन को लेके हमने कहा था कि एग्जाम्स के दौरान जो होता है वहीं सबसे ज्यादा स्ट्रेस दिखाई दे रहा होता है, क्योंकि अपनी नॉर्मल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में मैंने एक्सेप्ट किया हुआ है, यू नो नॉर्मल अपने रिलेशनशिप्स में भी मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन बच्चों का जब फैक्टर आता है एग्जाम्स का, उसमें इतना क्लियरली विजिबल हो जाता है, क्योंकि उसके रिजल्ट्स कई बार बहुत घातक जब हो रहे हैं।
1: जैसे मेरी प्रोफेशनल लाइफ में अगर कोई स्ट्रेस है, मैं उसको अपने तक ही रखती, यू नो, मेरे पर्सनल में कुछ अंदर कॉम्प्लेक्स चल रहा, मैं उसको अपने तक ही रखती हूँ। लेकिन जब घर में बच्चे का एग्जाम है, वो एक घर में, वो एक माहौल में आ जाता है, इसलिए वो शायद ज्यादा ऑब्वियस दिखता है कि, क्योंकि इट्स समथिंग जो हर एक फैमिली मेंबर, पेरेंट भी, बच्चा भी, छोटे भाई बहन के ऊपर भी, क्योंकि यू सी अगर बड़े का टेंथ है तो छोटे के ऊपर ऑटोमेटिकली बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, एंड प्लस सारे पेरेंट्स की अटेंशन भी एक पर ज्यादा चली जाती है। बहुत सारे, सी अ चाइल्ड, अ यंगर चाइल्ड विल आल्सो गो थ्रू अ लिटिल बिट ऑफ निग्लेक्ट, कि मेरी तरफ तो कोई ध्यान नहीं दे रहा, तो तब इसलिए कहते कि लगता कि सबका एग्जाम है घर के अंदर, इसलिए भी एग्जाम एक ऐसा वो है कि यू नो पूरा घर, पूरा परिवार उसको एक्सपीरियंस करता, तो वो एक बहुत बड़ी फिर फीलिंग आती है कि दिस इज स्ट्रेस। बाकी सब में देर इज लॉट ऑफ स्ट्रेस इंटरनली दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग, but we probably, you know, don't realize it because it doesn't hit everyone in the family equally.
0: और इनफैक्ट वो हिट तो कर रहा होगा, लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट यू नो डायरेक्ट नहीं कर रहा है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन इसमें जो कल बात जो पिछली कड़ी में निकल के आई थी वो था वो फॉर्मूला, यू नो अगर हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन माई इनर स्ट्रेंथ, यू नो, सो मेरी इनर स्ट्रेंथ इसमें और ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है।
1: इनर स्ट्रेंथ ही इसमें इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज दिन तक हम प्रेशर्स को ब्लेम करते आए कि कंपटीशन बढ़ रहा है, सिलेबस बहुत बढ़ रहा है, सिलेबस को चेंज कर दो ताकि बच्चों का स्ट्रेस खत्म हो जाएगा।
0: अच्छा, और पिछले
1: ग्रेडिंग सिस्टम को, या ग्रेडिंग सिस्टम
0: में हुआ भी है चेंज,
1: सो यू सी फोकस सारा किस पर है, व्हिच इज ओके, डू लेट्स डू व्हाटएवर फॉर द एजुकेशन सिस्टम, लेकिन फोकस सारा किस पर है कि ये प्रेशर, ये न्यूमरेटर अगर कम होगा तो स्ट्रेस कम हो जाएगा। डेफिनेटली न्यूमरेटर कम होगा तो स्ट्रेस कम हो जाएगा, लेकिन न्यूमरेटर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि मेरे कंट्रोल में नहीं है, एंड अगर जो चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं है उसी के ऊपर मैं सारा अटेंशन दूँ तो मेरा स्ट्रेस और भी बढ़ता है, क्योंकि वो मेरे कंट्रोल में नहीं और मैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश करूँ। तो जब भी कोई परिस्थिति आती है, 10% न्यूमरेटर प्रेशर, 90% डिनोमिनेटर इनर स्ट्रेंथ। तो 10% यस मेरे कंट्रोल में नहीं, लेकिन 90% मेरे कंट्रोल में है, लेकिन हम वो 90% को इग्नोर करके उस 10% के ऊपर ही सारा देते। तो राजयोग जब हम सीखते तो वी वेरी क्लियरली अंडरस्टैंड प्रेशर है, रहेगा, बढ़ता भी जाएगा जैसे जैसे परिस्थितियां चेंज होंगी। न्यूमरेटर को हमें बढ़ाना है और बहुत तीव्र गति से बढ़ाना है। सी अगर सिचुएशंस बहुत फास्ट चेंज हो रही है तो डिनोमिनेटर को क्या करना होगा, उससे भी ज्यादा फास्ट स्पीड से हमें अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना।
0: इनफैक्ट वी शुड स्टार्ट एंटीसिपेटिंग, यू नो, कि क्या क्या हो सकता है।
1: नो नो, आप और फियर क्रिएट करोगे वो
0: एंटीसिपेट
1: करके। अगेन ये कैसे वर्क नहीं करेगा, जैसे अर्थक्वेक आया, ठीक है, तो अर्थक्वेक जो गुजरात में हिट हुआ तो बहुत नुकसान हुआ, तो उसके बाद सारा फोकस गया कि अर्थक्वेक की प्रिपरेशन होनी चाहिए, बिल्डिंग्स को क्या ध्यान रखना चाहिए, वो सब, विच इज ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन उसके बाद फिर सुनामी आ गया, एंड वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द सुनामी, वी हैड प्रिपेयर्ड फॉर द अर्थक्वेक. सो हम सिचुएशन स्पेसिफिक अपनी प्रेपरेशन नहीं कर सकते हैं कि ये सिचुएशन आएगी तो मुझे कैसे फेस करना है. मुझे सिर्फ स्ट्रांग रहना है और बहुत स्ट्रांग बनना है ताकि कोई भी सिचुएशन आ जाए, फिर वो चाहे
0: तभी वो डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया.
1: एग्जैक्टली, इट्स नॉट अर्थक्वेक मैनेजमेंट, इट्स नॉट, इट इज डिजास्टर. एनी डिजास्टर इट हिट्स यू, यू शुड बी एबल टू फेस इट. तो उसमें भी डिजास्टर मैनेजमेंट ना करके हम सेल्फ मैनेजमेंट करते कि सेल्फ मैनेजमेंट हो जाए तो कोई भी डिजास्टर आ जाए यू आर एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि आपको ही तो क्रॉस करना है. तो इसलिए डिनोमिनेटर इनर स्ट्रेंथ पर फोकस करेंगे, आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे, परिस्थितियां वही है, कंपटीशन वही है, लेकिन आपका स्ट्रेस फैक्टर कम होता जा रहा
0: है. तो शिवानी, यहाँ एक मेल में हमारे पास आया है जिस पर मैं बात करना चाहती हूँ इसी को लेकर, कि एक पेरेंट का मेल है कि हमने पूरा एटमॉस्फेयर जो है वो कंफर्टेबल रखा हुआ है और सारी चीज़ें जो होनी चाहिए वो की हुई हैं, लेकिन मुझे अपना फियर है, तो क्या वो मेरा फियर भी पहुंच रहा है? उस फियर को मैं कैसे ना पहुंचने दूं, यू नो, बच्चे तक? दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि हम अपनी तरफ से, क्योंकि इतना इसके ऊपर चर्चा हो चुकी है, हर चैनल, हर अखबार जो है, हर हेल्पलाइन इसी पर बात करती है कि क्या किया जाए, तो उसको करने के लिए हम बच्चे को रिलैक्स करने के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन वो जो एबनॉर्मलिटी है, एंड देयर वाज दिस मेल, इट सेड कि मेरे को रियलाइज हो गया कि मैं इतना कुछ उसे रिलैक्स करने के लिए कर रही थी लेकिन मैं एबनॉर्मल थी.
1: हम रिलैक्स करने के लिए, इट्स वेरी गुड कि हम रियलाइज कर रहे हैं कि हमें रिलैक्स करना है, लेकिन हम बाहर तो सब कुछ कर रहे हैं कि एक बहुत अच्छा वातावरण बना रहे हैं जिसमें बच्चा बहुत कंफर्टेबल होगा, लेकिन अगर फियर क्रिएट हो रहा है तो वो वाइब्रेशन है. तो फिजिकल रिलैक्सेशन एक छोटा सा पार्ट प्ले करती, लेकिन मेंटल रिलैक्सेशन वो बहुत इम्पोर्टेंट है. एंड मेंटली रिलैक्स होना मीन्स नो फियर. सी, हम फियर कैसे नहीं क्रिएट करें, हम किस चीज़ का फियर क्रिएट कर रहे हैं कि सपोज नहीं सक्सेसफुल हुए ये, फिर हमने उसके पीछे पीछे अपनी थॉट्स को देखते जाएं कि हमने सक्सेस के डेफिनेशन किस पर रखे थे, 95% मार्क्स, तो देन वी आर ट्राइंग टू से अगर 95 नहीं आए तो ही इज़ अ फेलियर. एंड ये हम एंटिसिपेट कर करके हम फियर क्रिएट कर रहे हैं, और जो हम फियर क्रिएट करेंगे वो मुझे इमोशनली ड्रेन आउट करता, मेरे बच्चे को बहुत इमोशनली वीक करता है. व्हाट वी नॉट रियलाइजिंग, बच्चा अभी बड़ा हो रहा है, यू नो, राइट फ्रॉम वो जो स्कूल एडमिशन एज टू वट एवर 10th स्टैंडर्ड. जैसे एक बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट होती है, बच्चे की एक इमोशनल डेवलपमेंट भी तो हो रही है. अब इस इमोशनल डेवलपमेंट की स्टेज में हम कौन सी एनर्जी सारा दिन देते हैं? अगर उस बच्चे को नेगेटिव एनर्जी, फियर की, इनसिक्योरिटी की मिलेगी, विल दैट चाइल्ड ग्रो अप टू बी अ स्ट्रॉन्ग चाइल्ड? हमें आज अगर हम देख रहे हैं कि आज के कॉर्पोरेट सेक्टर में इमोशनल इंटेलिजेंस इज समथिंग विच इज लुक्ड फॉर. गो 20 इयर्स बैक एंड वो था इंटेलिजेंस क्वेश्चन देखा जाता था, उसका एप्टीट्यूड टेस्ट होता था. आज हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इमोशनल स्टेबिलिटी का टेस्ट लिया जाता है. क्यों? देर इज अ शिफ्ट ना, कि ठीक है, अब तो बहुत सारे लोग हैं जो IIT से आ रहे हैं, IIM से आ रहे हैं, बट वी वॉन्ट वो लोग जो स्टेबल हैं. तो अब अगर कॉर्पोरेट सेक्टर का, जिसके लिए आप अपने बच्चे की तैयारी कर रहे हैं, जब उनका फोकस इमोशनल स्टेबिलिटी पर आ गया है, तो ये इमोशनल स्टेबिलिटी कौन क्रिएट करेगा बच्चे के अंदर? हमें क्रिएट करना पड़ेगा. हमारा बच्चा सक्सेसफुल जीवन में तभी हो पाएगा अगर वो इमोशनली स्टेबल है. हम इतना फियर, इतनी एक्सपेक्टेशंस का भी प्रेशर क्रिएट कर देते कि बच्चे उस एक्सपेक्टेशंस के प्रेशर के कारण भी परफॉर्म नहीं कर पाते. यू नो, अगर हम अपने बच्चे को कह पाते कि यू स्टडी हार्ड एंड देन वट एवर हैपन्स आई एम फाइन विद इट, जितने भी आपके मार्क्स आए आई एम फाइन विद इट, बट प्रोवाइडेड आप अपना बेस्ट एप्टीट्यूड उसके अंदर लगा दो.
0: आई डोंट थिंक देयर इज एनी पेरेंट जो ये नहीं कहता होगा.
1: नहीं, हम ये सोचते हैं कि अगर हम ये कहेंगे कि आपके जितने भी मार्क्स आएंगे आई विल बी फाइन विद इट, तो हमें लगता है कि फिर बच्चे के ऊपर तो कोई प्रेशर नहीं डेवलप हो रहा.
0: लेकिन आजकल सिस्टर शिवानी, मैं इसी पे आना चाहती थी, मैक्सिमम पेरेंट्स यही कहते हैं कि आप जो भी आएगा, यू आर माई चाइल्ड, आई एक्सेप्ट यू, आपके हम मुझे कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं है, आप अपना काम करते रहो. और मैक्सिमम पेरेंट्स से जब बात करो,
1: सिर्फ बोलने के लिए या सोच में भी. सी, बोलने वन थिंग इज कि आप ये बोल रहे हैं, लेकिन इंटरनली तो आपकी सोच और आपकी आपस में जो कॉन्वर्सेशन है, क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो बच्चा बहुत ज्यादा स्ट्रेस के अंदर है, तो आप चाहते हो कि उसको यू नो रिलैक्स करो, तो हम कहते हैं कि कोई बात नहीं तुम पढ़ो, लेकिन क्या हमारी सोच वही है? हमारी सोच में क्या है? आई मेट वन गर्ल हुज इन द 12th स्टैंडर्ड, तो उन्होंने कहा कि मेरे घर में बहुत मेरे ऊपर प्रेशर है कि आपको IIT से क्लियर करना है एंट्रेंस एग्जाम. तो कहती जैसे ही घर पहुंचती हूँ ना तो मेरे फादर शुरू हो जाते हैं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो. एंड शी सेइंग अब मैं एक्चुअली एक डिप्रेशन की स्टेज एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि अब मैं जितना पढ़ती थी ना मेरे से उतना भी नहीं पढ़ा जा रहा है, क्यों मैं एकदम वो हो गई हूँ सुन सुन के. हाँ, एंड शी सेज पता है मेरा स्कूल के बाद घर जाने को दिल नहीं करता, कि जैसे ही घर जाएंगे ना तो वो शुरू हो जाएंगे. तो आई जस्ट थॉट के वी विल मीट हर फादर. तो उनके फादर से मिले तो आई जस्ट सेड कि आई सेड भाई साहब वी अंडरस्टैंड कि आपकी बहुत यू नो अच्छी भावना है बच्चे के प्रति, लेकिन कई बार थोड़ा सा देख लेना चाहिए कि बच्चे के ऊपर क्या इफेक्ट पढ़ रहा है. सो ही जस्ट रिएक्टेड लाइक दैट. ही से तो आपका क्या मतलब है? नहीं बोलो, नहीं बोलो उसको पढ़ने के लिए, 6 महीने में फिनिश हो जाएगा, ये 6 महीना है मेरे को सिर्फ
0: आपकी जिंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट,
1: ये मेरे पास सिर्फ 6 महीना है उसके ऊपर वो प्रेशर बिल्ड करके उससे वो क्लियर करवाने का. अगर ये 6 महीना मैंने नहीं बोला नहीं करवाया एंड इफ शी डजंट क्लियर देन वॉट, बट वी आर नॉट रेडी टू सी कि वो जो मैं बोल रहा हूँ, वो जो मैं एनर्जी दे रहा हूँ, उसका उस बच्चे पे क्या इम्पैक्ट. बिकॉज वो गर्ल के तो फेस पे विजिबल था, आई डोंट नो व्हाई द पेरेंट कांट सी इट, कि उसके फेस पे विजिबल है कि वो एकदम ऐसी स्थिति में चले गए.
0: प्रेशर, यू नो. अनदर थिंग व्हिच आई वांट टू टॉक अबाउट, इफ वी आर रियली टॉकिंग अबाउट दिस इशू, इज कि डू द पेरेंट्स और टीचर्स रियलाइज कि हो क्या गया है इन सिर्फ 2 सालों में? हम उन्हें मशीन बना देते हैं. आई मेट अ मदर, वो कहती है मैं नहीं चाहती हूँ. उनका बेटा आता है 3 बजे स्कूल से वापस, अभी 11th में है, 3:30 बजे वो चला जाता है इतनी दूर, आई थिंक 15 किलोमीटर गाड़ी उनके साथ जाती है कि वो कुछ क्लासेस ज्वाइन की हुई हैं IIT में एडमिशन के लिए. अभी 12th में तो वो बाद में आएगा, वहाँ पे वो 3:30 बजे निकल के 4:30 पहुँचता है, 7:30-8 बजे वापस आता है. हर रोज़ का उसका स्केड्यूल है. उसके बाद स्कूल में भी उसका एक कोचिंग का पैटर्न है जिसको वो अटेंड नहीं कर पा रहा, सैटरडे संडे वहाँ जाना होता है. तो शी ओनली सेड कि मैं परेशान, क्योंकि मदर को उसके साथ ही सारा काम छोड़ के पूरे 2 साल उन्होंने इस पे लगाया है. आई डोंट अंडरस्टैंड, शी सेड बिकॉज दिस इज व्हाट माय यू नो सन वांटेड. बट डू वी रियलाइज, हम कई बार बच्चे के साथ भी तो काउंसलिंग नहीं कर पा रहे, उसको हम समझा नहीं सकते क्या?
1: True, that's
0: Why do we get under this pressure also?
1: Of course, अब बच्चा क्या करियर चूज करना चाहता है या फैमिली ने क्या डिसाइड किया आपस में, दैट ऑफ कोर्स ईच वन विल डिसाइड फॉर themselves. उसके लिए क्या एफर्ट करना है वो भी शायद नीड ऑफ द आवर है कि एफर्ट बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है. लेकिन उस चीज़ के साथ साथ सिर्फ इधर ध्यान रख लें, क्योंकि जितना ज़्यादा आपको एफर्ट करना पड़ रहा है, जैसे आपने कहा वीकडे भी सुबह से रात तक, सैटरडे संडे भी सुबह से रात तक.
0: बट यू थिंक सिस्टर शिवानी एक्चुअली, और ये बहुत बच्चे गुजर रहे हैं, आई थिंक टुडे वी रियली नीड टू टेक अ पॉज. मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ उसके उस बच्चे पे जो ऐसे इससे जा रहे हो, और बहुत सारे बच्चे कहते हैं हमें इतना मेंटल परसिवरेंस है हम कर लेंगे, और वो सिर्फ 17-18 साल के जो बच्चा है, जो जिसपे खाने का भी उनका जो हालत हो चुकी होती है और जिस तरह से वो पूरा उनका लाइफस्टाइल हो चुका होता है. आई जस्ट वॉन्ट टू नो वॉट इज गोइंग टू हैपन टू दीज चिल्ड्रन जब ये आगे बड़े भी होंगे, और इनका फिजिकल क्या बर्नआउट नहीं होगा?
1: नो, सी व्हाट हैपेंस, इस एज ग्रुप में हमारे अंदर स्टैमिना बहुत है, फिजिकल भी बहुत स्टैमिना है, मेंटल भी बहुत स्टैमिना है. लेकिन आप इसलिए हमें लगता है कि 1 साल की तो बात है ना, लेट मी जस्ट गिव इट, क्योंकि अगेन ये एक यू नो जो वर्डिंग्स हैं वो है इस 1 साल पर तुम्हारी पूरी जीवन
0: यू नो
1: निर्भर करती है. हमने ये नहीं सोचा हमारी जिंदगी बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करती है, बट चलो कोई बात नहीं. इवन देन इफ दिस 1 ईयर हैज़ एवरीथिंग, पुट इन योर बेस्ट वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट देन इक्वली टेक केयर. सी, अगर आप इस शरीर से और इस मन से इतनी मेहनत करवा रहे हो तो साथ साथ उतना ही ज़्यादा आपको उसका ध्यान देना पड़ेगा, कि फिजिकली तो फिर भी आई थिंक वी मस्ट बी लुकिंग आफ्टर आवरसेल्व्स, लेकिन मेंटली आई डोंट थिंक वी लुकिंग आफ्टर आवरसेल्व्स. क्योंकि जितना ज़्यादा हम ये एफर्ट कर रहे होते हैं उतना ज़्यादा हम उसके फ्यूचर के साथ अटैच्ड भी हो गए हैं, कि जहाँ मैंने इतना एफर्ट किया है तो उसका रिजल्ट तो अच्छा होना ही होना है. रिजल्ट अच्छा ही होता है, लेकिन फिर कुछ एक केसेस में जहाँ रिजल्ट नहीं उतना फेवरेबल होता तो हम उसके लिए रेडी नहीं थे, क्योंकि वो हर दिन दिन और रात मेहनत करना बहुत अच्छी बात, लेकिन मेहनत के साथ साथ उस रिजल्ट के साथ पहले ही अटैच हो जाना कि ये होना ही है, आपका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होना ही, मतलब देयर इज जस्ट नो पॉसिबिलिटी कि आप कुछ और करने वाले हैं. वो अटैचमेंट, वो पूरा जो घर के अंदर क्रिएट हो जाता, फिर बाई चांस अगर वो नहीं होता है तो फिर बच्चे के अंदर वो ताकत नहीं, तब पता चलता कि ताकत एक्चुअली नहीं थी.
0: नहीं, यू नो वही मैं कह रही हूँ, क्योंकि आप इतने ऑलरेडी इन दो सालों में ड्रेन्ड आउट हो चुके.
1: ड्रेन्ड आउट पढ़ने से नहीं होते हो, ड्रेन्ड आउट मेहनत करने से नहीं होते हो, ड्रेन्ड आउट इस प्रेशर को फेस करने का राइट तरीका नहीं है उसे. एंड अगेन वी वुड से बी इन द प्रेजेंट, रोज मेहनत करनी है, रोज पढ़ो विदाउट क्रिएटिंग ऑल दीज फियरफुल थॉट्स, क्या होगा, होगा नहीं होगा, उसका तो हो गया, मेरा क्या होगा, यू नो इसमें कंपैरिजन आता, कंपटीशन आता, ये वाली थॉट्स को अगर आप सारा डिलीट कर सकते हो, इसलिए मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है एक स्टूडेंट लाइफ में. अगर एक स्टूडेंट रोज सुबह अपना दिन ये चार्जिंग से, पॉजिटिविटी से और राइट काइंड ऑफ थॉट से शुरू करें, मेहनत इज नॉट डैमेजिंग, मेहनत कर सकते हैं हम, बहुत मेहनत, इनफैक्ट हम जितना करते हैं उससे कई गुना ज्यादा कर सकते हैं लेकिन प्रोवाइडेड हमारी लीकेज नहीं कहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ एनर्जी तो उतनी ही है, उस एनर्जी को आप किस पर्पस के लिए फोकस
0: पकड़ के आप चल रहे हो ना, वो बहुत डैमेजिंग हो सकता है.
1: तो कई बच्चों का फिर ऐसे मालूम पड़ता कि अगर उनको वो रिजल्ट नहीं मिला जो जो एक्सपेक्टेड था, जरूरी नहीं होता कि फेलियर है, लेकिन जो रिजल्ट मैंने एक्सपेक्ट किया था वो रिजल्ट नहीं हुआ. दिल्ली में ये पिछले साल की बात है, देयर वाज दिस गर्ल हु केम सेकंड इन क्लास, wanted or expected to come first in class, she committed suicide. How can someone commit suicide for coming second in class? I mean, second in class, you're one of the toppers of the class. Aap class mein second aane ke liye suicide commit jis bacche ne kiya hai, uski mental state ka hum imagine kar sakte ki wo first aane ke idea se itna zyada attached the ki wo second ko face karne ki unke andar ताकत ही नहीं,
0: और वो पूरा जो एनर्जी वो ऑलरेडी उतने टाइम में हो चुके हो,
1: इट वाज जस्ट ओवर. तो हियर द चाइल्ड प्लस द पेरेंट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वर्क हार्ड, स्टडी, फोकस, एवरीथिंग, लेकिन रिजल्ट इट्स ओके, क्योंकि अगर आप मेहनत कर रहे हो तो रिजल्ट तो अच्छा आना ही आना है, लेकिन वो फियर वाली थॉट्स अभी क्रिएट करके अपने आप को ड्रेन आउट नहीं करो. क्योंकि क्या होता है, जब पेरेंट्स भी बहुत मेहनत कर रहे होते हैं बच्चे के साथ, बच्चा देखता है कि मेरा रिजल्ट पेरेंट्स के लिए बहुत मैटर करता है, यू नो फॉर ए चाइल्ड पेरेंट्स आर एवरीथिंग. जब मुझे दिखाई देता कि मेरा ये मार्क्स जो आने वाले हैं ये मेरे पेरेंट्स के लिए, यू नो इट्स बिकम लाइक लाइफ एंड डेथ, यू कैन सी द पेरेंट्स की सारी खुशी, अगेन वो खुशी वो मार्क्स के ऊपर डिपेंडेंट हो गई है, वो भी एक प्रेशर बच्चे के ऊपर क्रिएट हो जाता कि मुझे परफॉर्म करना है तो किसके लिए, अपने पेरेंट्स की हैप्पीनेस के लिए. मेरी हैप्पीनेस से ज़्यादा मेरे पेरेंट्स की हैप्पीनेस मेरे मार्क्स पर जुड़ी है. ये सारे जो प्रेशर्स है ना, ये अननेसेसरी प्रेशर है. पढ़ाई का प्रेशर है वो इतना सही है, वो फेस कर लेंगे, लेकिन ये एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर, मेरी हैप्पीनेस इस पर डिपेंडेंट है, आपकी पूरी लाइफ इस पर, ये जो प्रेशर्स हैं ये फिर वो न्यूमरेटर को बहुत ज़्यादा बड़ा कर देते हैं. एंड देन आई रियली डोंट हैव द स्ट्रेंथ to face up with it. And then we come across depression. Students go into depression. Nahi to student life mein depression. Unheard of. Student life mein diabetes, hypertension. Unheard of. Lekin aaj kyun? Kyunki pressures bahut badhte ja rahe and coping skill koi sikha nahi raha. कोई भी नहीं सिखा रहा कि राइट थिंकिंग क्या है इसमें, कोई भी नहीं सिखा रहा कि कंपटीशन हेल्दी नहीं है, कंपैरिजन है, सभी यही सिखा रहे हैं कि कंपैरिजन करना है, कंपटीशन कर.
0: जब तक नहीं, अगेन एंड अनदर थिंग विच आई रियलाइज इज, जब उनके फादर ने कहा कि अगर मैं स्ट्रेस क्रिएट नहीं करूंगा तो वो पीक परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा. सो दिस इज अगेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम हमारा, कि जब तक स्ट्रेस नहीं होगा, इवन ऑफिस में, मतलब अगर हम मल्टीनेशनल में देखते हैं तो बॉस बोलता है अगर मैं नहीं क्रिएट करूंगा, कंपटीशन नहीं क्रिएट करूंगा, प्रेशर नहीं क्रिएट करूंगा, स्ट्रेस नहीं दूंगा, परफॉर्मेंस.
1: अब ये भी एक हमें सोचने की बात है कि स्ट्रेस मतलब फियर, फियर, और हम फियर को यूज कर रहे हैं मोटिवेशन क्रिएट करने के लिए ना, फियर इज अ मोटिवेटर. तो फियर एक नेगेटिव एनर्जी, मोटिवेशन एक पॉजिटिव एनर्जी, तो एक नेगेटिव एनर्जी से आप एक पॉजिटिव एनर्जी कैसे क्रिएट कर सकते हो? गिव लव, गिव कंपैशन, गिव सपोर्ट, लेकिन गिविंग फियर, ताकि फियर से वो मोटिवेट हो जाए, इट विल नेवर हैपन. कभी भी ऑफिस में अगर हम देखें कि सब लोग काम कर रहे हैं तो अपना बहुत अच्छा काम करते हैं अपने आप, जैसे ही अगर कोई ऐसा सीनियर आकर खड़ा हो जाए जो हमेशा ऐसे वाला है, यू नो, बहुत ऐसे आप देखेंगे कि सब की क्या, यू नो, जस्ट थिंग्स टू, बिकॉज वी हैव सीन लॉट ऑफ पीपल, वो कहेंगे गलतियां तो निकालनी चाहिए, क्रिटिसाइज करते रहोगे ना तो ये अपने आप को और भी ज्यादा इम्प्रूव करेंगे. अगर इनको अप्रिशिएट ही करते रहे ना सारा दिन, तो अप्रिशिएट करेंगे तो इनकी परफॉर्मेंस, आई मीन दिस इज थॉट पैटर्न, कि अगर अप्रिशिएट करेंगे तो ये तो फिर अपना बेस्ट एफर्ट नहीं देंगे, ये सोचेंगे वी हैव रीच्ड आवर बेस्ट.
0: दैट्स व्हाट वी डू विद किड्स आल्सो. You know, we've stopped appreciating them because अगर हमने किया तो इनको फिर आगे पढ़ना बंद कर देंगे या ये कर नहीं पाएंगे आगे.
1: What we have to understand is energy का खेल है सर. Appreciate करोगे वो पॉजिटिव एनर्जी है. पॉजिटिव एनर्जी कभी भी किसी को ऐसे नहीं कर सकती है. पॉजिटिव एनर्जी हमेशा empower करेगी. And critical हो जाएंगे बात बात में, और वो भी इस इंटेंशन से क्रिटिसाइज करेंगे ना, तो अपने आप वो और ज़्यादा मेहनत करेगा, क्योंकि हम अपने बॉस की या अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस को बीट करना चाहते हैं. तो अगर वो हमारे काम में गलतियाँ निकालेंगे तो हम मोटिवेट हो जाते हैं, ये बिलीफ सिस्टम है कि ये फिर मोटिवेट होंगे और मेहनत करने के लिए. अगर बॉस नहीं आके जूनियर्स को प्रेस कर दिया, फिर तो वो बहुत अच्छा, बॉस खुश हो गया तो चलो, व्हाट एफर्ट डू आई हैव टू पुट. वेरी वेरी, what to say, call it wrong or what, this belief system
0: doesn't
1: needs
0: work
1: to be checked.
0: Actually, it is not working.
1: It doesn't work. Kyunki jahan koi mehnat kar raha hai aur aap jaakar us par critical ho jate hain, aap turant uski energy ko, फिर या तो वो सामने वाले के अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो आपकी क्रिटिसिज्म के साथ, यू नो, इन्फ्लुएंस्ड ना हो जाए. लेकिन क्योंकि आज हम बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं एक दूसरे की एनर्जी से,
0: पर हम चाहते भी हैं कि वो हमारे क्रिटिसिज्म से इन्फ्लुएंस हो.
1: हाँ, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो हमारी क्रिटिसिज्म से और अच्छा करे, बट दैट्स नॉट व्हाट इज गोइंग टू हैपन. क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज डिसएम्पावरमेंट. आपको फीडबैक देना है, यस, इट इज़ नॉट कि आप काम ठीक नहीं है फिर भी आप कहेंगे कि योर वर्क इज़ परफेक्ट. लेकिन एक है काम पर फीडबैक देना और एक है क्रिटिकल एनर्जी देना, दोनों में बहुत फ़र्क है. इसलिए वर्ड्स मैटर नहीं करते, वर्ड्स के पीछे का इंटेंशन मैटर करता है. आप फीडबैक देते हुए भी किसी को एम्पावर कर सकते हो, और कई बार ये बोलते हुए भी कि हाँ बहुत अच्छा है, लेकिन यू नो, आप उसको डिसएम्पावर कर सकते हो. तो हमें सिर्फ ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा फोकस है काम पर, कि ये काम और अच्छा करे, ये काम और अच्छा करे. हमें ये याद रखना पड़ेगा काम करने वाला कौन है. जो काम करने वाला है, ये शक्ति, उसको जब तक हम एम्पावर नहीं करेंगे तो काम और अच्छा नहीं होगा. हमारा रोल एज अ बॉस और एज अ पेरेंट इज टू फैसिलिटेट, टू गाइड एंड टू एम्पावर. काम वो लोग करेंगे, काम तो अपने आप हो जाएगा. जब एक सीनियर आकर खड़े होते हैं जो थोड़ा इस तरह की एनर्जी ट्रांसमिट करते हैं, तो अगर मैं सही भी काम कर रहे होते हो ना, तो वो एनर्जी के इन्फ्लुएंस के अंदर मेरे से गलतियां होने लगती हैं. एंड फिर वो गलतियां ढूंढ लेते हैं क्योंकि उसके अंदर अब गलती आ गई. लेकिन वो गलती इसलिए हो जाती क्योंकि वो फियर मेरे अंदर क्रिएट हो जाता, क्योंकि माई पास्ट एक्सपीरियंसेस ये आए हैं, अब ये उस तरह की एनर्जी देते हैं. और उनका आना ही, खड़े होना ही, और उस, यू नो, इंटेंशन के साथ खड़े होना, इट क्रिएट्स अ वाइब्रेशन इन द रूम. एंड यू नो, मतलब आप देखेंगे कि विद द एम्प्लॉयज जो अभी तक अच्छा काम कर रहे थे, अब सडनली उनसे गलतियां हो जाती, क्योंकि स्ट्रेस मेरी परफॉर्मेंस को इन्हेंस नहीं करता, वो हमेशा मेरी परफॉर्मेंस को नीचे ही लेकर आएगा.
0: लेकिन एक बात, बहुत लोग बहुत बार सोचते हैं कि जैसे ही मैं इनको प्रेज करता हूँ या अप्रिशिएट करता हूँ किसी के साथ भी अगर हम ले, तो यू नो, इनका सर चढ़ जाता है. ये शब्द बहुत बार यूज किया जाता है, एंड दिस इज समथिंग अ वेरी दैट काइंड ऑफ लैंग्वेज. लेकिन ये बात कही जाती है मैक्सिमम लोग, चाहे वो घर पे हों, चाहे वो बाहर हों, या यू नो, लाइक, और डिसरिस्पेक्ट शुरू कर देंगे. जरा सा मैंने इनको ढील दी ना, ये मेरे सर पर चढ़ के बैठेंगे.
1: चलो उनके बारे में नहीं बात करते, अपने बारे में सोचते हैं. क्योंकि अगर मैं सीनियर हूँ तो मेरे से ऊपर कोई और सीनियर है, नहीं भी है तो आई कैन इमेजिन तो ना, कि कोई अगर मेरे से सीनियर हो तो मुझे क्या अच्छा लगेगा, कि वो मेरे से कैसे काम करवाए, वो मेरे से कैसे बात करे. अच्छा, मैं सीनियर हूँ, बच्चा तो कभी था ना, तो जब मैं बच्चा था तो मैं क्या चाहता था कि मेरे पेरेंट्स कैसे बात करें मुझसे. क्या मेरी पर्सनालिटी ये थी कि अगर मेरे पेरेंट्स मुझसे प्यार से बात करते तो मैं उसका अनड्यू एडवांटेज ले लेता?
0: नहीं,
1: कभी भी नहीं. एंड
0: भले मैं तो अच्छा था,
1: सारे ही अच्छे होते हैं ना. नहीं, सारे ही वैसा करते. वी थिंक दैट हम ऐसा करते, बट एक्चुअली सारे ही ऐसे हैं. एवरीवन लाइक्स लव, एवरीवन लाइक्स सपोर्ट, एवरीवन लाइक्स कंपैशन. कोई मिला आज तक जो कहे मुझे क्रिटिसाइज करो तो मैं ज़्यादा अच्छा काम करूँगा? तो ये कई बार, हाँ, ये होता क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें आदत पड़ी है डांट से काम करवाने की. इसी तरह सामने वाले को भी आदत पड़ी है कि डांट तो पढ़नी ही है, तो हम दोनों के संस्कार थोड़े वैसे वाले हुए हुए हैं. लेकिन आप एक बार ट्राई करके देखो कि डांट से नहीं, प्यार से ही काम करना है. भले वो काम करें, हो सकता है 2 दिन 4 दिन 1 महीना 4 महीना लग जाए कि वो पूरा जो वर्क कल्चर है उसमें एक चेंज आए, लेकिन चेंज ज़रूर आएगा. एंड अब जो काम होगा ना पूरा, एक तो सब लोग बहुत आपस में नज़दीक हो जाएंगे क्योंकि देन यू नो देयर इज़ द राइट एनर्जी फ्लोइंग. अभी देयर वॉज नेगेटिव एनर्जी फ्लोइंग. आप किसी को क्रिटिसाइज करो फिर वो आपसे नफरत करे, तो यू नो बिटवीन द बॉस एंड द जूनियर नॉट वेरी गुड एनर्जी. लेकिन जब ये प्यार और सपोर्ट एक्सेप्टेंस की एनर्जी फ्लो करती, वी ऑल कम लाइक दिस, एंड देन हमें कोई कहेगा नहीं कि काम करो. हमारा खुद मन करेगा कि हम काम करें इनके लिए, इनकी कंपनी के लिए, क्योंकि इनकी कंपनी हम हमें अपनी लगती है. यू नो देयर इज अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस टू द वर्क. आज कॉर्पोरेट सेक्टर में कहते हैं यू शुड फील, यू नो, ब्रिंग योर हार्ट टू वर्क. आप अपना दिमाग तो लेकर आ रहे हैं ऑफिस में, लेकिन अपना दिल घर पर छोड़कर आते हैं. योर बिलोंगिंगनेस इज एट होम, बिलोंगिंगनेस इज नॉट एट वर्क. व्हाई? बिकॉज दिस एनर्जी इज नॉट देयर. फिर आपको काम करवाना नहीं पड़ेगा, काम होता जाएगा. और इतनी ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, किसी से कोई गलती होगी वो खुद से आकर सच बताएंगे आपको, क्योंकि उनको पता है कि आप डांटने वाले नहीं हैं. सो दैट ट्रस्ट एंड दैट बॉन्डिंग विच विल गेट क्रिएटेड, इट जस्ट हैज टू बी सीन, एक्सपेरिमेंट एंड करके देखें.
0: एंड फिर गलतियां भी कम होंगी क्योंकि डर नहीं होगा ना. ऑफ कोर्स डर के कारण बहुत कुछ गलत होता जाता है.
1: डर के कारण एक विशेष साइकिल बनता. गलती हो जाती, फिर गलती को छिपाते हैं डर के कारण, फिर छिपाकर उसका ब्लेम किसी और पर डालते हैं. अगर बॉस ने मुझसे पकड़ लिया कि मेरी गलती हुई, मैं तुरंत बोलूंगी मेरी वजह से नहीं, उनकी वजह से. ब्लेम डाला, जैसे ही ब्लेम डाला मेरा और उस सबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप भी अफेक्ट हुआ. Whole energy flow gets affected. And agar transparency hai, I can say, yes, I'm sorry, mere se galti hui. And it's finished.
0: Aur somewhere, you know, meri kabhi intention thi nahi na, to wo confidence rahega mujhe ki haan, theek hai, maine intentionally nahi kiya. Again, amazing, humne bachchon se shuru karke aaj baat jo hai, aur stress ko humne jab ye dekha ki jab jitni meri inner stability, mera inner resistance bar badhta ja raha tha, wo jo स्ट्रेस जो था वो और कम होता जाता है. इनफैक्ट जिसको हमने नॉर्मल मान के, जब हमने कहा कि जितना स्ट्रेस होगा उतनी मेरी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, तो यहाँ ये समझ में आया है कि स्ट्रेस जो था वो मेरी परफॉर्मेंस को इनफैक्ट और वीक कर रहा था, और उसके लिए मुझे स्ट्रेस को निगेट करना या निल पर लेकर आना बहुत ज़रूरी हो जाता है. सिस्टर शिवानी, थैंक यू सो मच.
1: ओम शांति.
0: अगर आपके पास कोई सवाल मन में उठ रहा है, कोई बात है, आपका हम स्वागत करते हैं. आप हमें ईमेल पर या फिर फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0124-266-7000, 999-344-555, 999-344-666, 9873-666-555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज इतना ही. आने वाली कड़ियों में कुछ और बातें आपके साथ शेयर करेंगे. अभी आपसे विदा लेते हैं. ओम शांति.

0: श्रोताओ नमस्ते। आचार्य विनोबा भावे की जीवनी पर आधारित प्रेम पंथ अहिंसा का इस रेडियो धारावाहिक में आप सबका स्वागत है। आज हम सुनेंगे ग्रामदान योजना के बारे में विनोबा जी के विचार।
1: प्रेम पंथ अहिंसा का।
2: ग्रामदान की योजना की बात चली तो विनोबा जी अपनी यात्रा के अनुभव को बताते हुए कहते हैं, भूदान यज्ञ में एक अद्भुत बात हुई जिसकी आशा लोगों ने कभी नहीं की थी, लेकिन मेरे मन में था कि कभी वह जरूर होगा। वह बात है गांव की कुल जमीन गांव की बनना, गांव के कुल लोग कुल जमीन का दान सर्वस्व दान दे, फिर जमीन गांव की हो और गांव वाले जैसा चाहें वैसा प्रयोग करें। मुझे खुशी है कि कई पूरे गांव दान में मिल चुके हैं, इनमें जीवन का बिल्कुल ही नया दर्शन हो सकता है। ऐसी घटना दुनिया के इतिहास में एक अद्भुत घटना गिनी जाएगी। जबकि हिंदुस्तान के लोगों ने पूरे के पूरे देहात दान में दे दिए, ऐसी बात कभी किसी ने सुनी नहीं थी। इसमें किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है और न हो भी सकता है, ऐसे काम दबाव से नहीं बनते। ऐसे गांव के गांव थाने के थाने पूरे मिल जाए तो उनमें हम ग्राम राज राम राज की योजना बना सकते हैं। उड़ीसा के कोरापुट के जंगल के लोग बिल्कुल तत्वज्ञान नहीं जानते थे, लेकिन जब उन्हें समझाया गया कि छोटे छोटे गांव का एक परिवार बनाओगे तो आपकी ताकत बढ़ेगी, तो वे समझ गए। उन्होंने समझ लिया कि मालकी छोड़ने में ही ताकत है। उड़ीसा में जो व्यापक परिणाम में ग्रामदान हुआ उससे जमीन की मालकी की जड़ें हिल गई और ग्राम राज्य किस तरह बनाया जा सकता है यह सोचने के लिए सामग्री मिली। ग्रामदान में एक नया विचार ही खुल गया। सिर्फ भारत के सामने ही नहीं बल्कि दुनिया के सामने भी एक मार्ग खुल गया। जमीन पर व्यक्तिगत माल की खत्म होकर जमीन गांव की बनने से ग्राम स्वराज्य की राह खुल सकती है। यह विनोबा की प्रतिभा ने भांप लिया। वे फिर ग्रामदान की हिरट लगाते रहे और ग्रामदान सर्वोदय आंदोलन का प्रमुख कार्यक्रम बन गया। गांव की पूरी जमीन का करीब करीब समान पुनर्वितरण सैकड़ों गांव में हुआ, लेकिन यह चीज व्यापक होना कठिन था। इसीलिए विनोबा ने ग्रामदान की मूल भावना कायम रखकर 1963 में उसका सुलभीकरण किया, सुलभ ग्रामदान का कार्यक्रम दिया। उसी के आधार पर आंदोलन व्यापक बना और कई राज्यों में ग्रामदान कानून बने।
0: सुलभ ग्रामदान पर विचार व्यक्त करते हुए वे कहते हैं, पुराना ग्रामदान पूर्णतया समाज प्रेरणा के अनुकूल था, लेकिन वह स्वार्थ प्रेरणा के लिए उतना अनुकूल नहीं था। मैं दोनों का मेल साधने की युक्ति सोचता रहा। मुझे लगा कि पुराना भूदान छोड़ना ठीक नहीं, इसलिए जमीन के 20वें हिस्से की मांग रखे और वह जोत की जमीन हो। बाकी जमीन की मालकी वह गांव को समर्पण करे। बाकी की जमीन उसी व्यक्ति के हाथ में रहेगी और वह उसके वंशजों को मिलेगी। हमारा यह विश्वास है कि आज के जमाने में दान की जितनी प्रेरणा है उससे अधिक दान प्रेरणा आने वाले जमाने में होगी, इसलिए आगे सहज और अधिक सम्मति मिलेगी। जमीन वितरित करने के लिए तथा सामूहिक खेती करने के लिए भी लोग धीरे धीरे तैयार होंगे, लेकिन फिलहाल लोगों के मन में ग्रामदान के लिए अनुकूलता होनी चाहिए। जैसे सबको हवा और पानी चाहिए वैसे ही सबको भूमि चाहिए। ग्रामदान यानी गांव की भूमि सबकी। लेकिन आज जमीन पर व्यक्तिगत मालकी का विचार समाज में मान्य है। इस वस्तु स्थिति का स्वीकार करके ही हमें आगे बढ़ना है। सुलभ ग्रामदान में इसकी व्यवहारिक योजना की गई है। यह सब सोचकर हमने यह सुलभ ग्रामदान प्रारंभ किया। सुलभ ग्रामदान का प्रारूप कुछ इस तरह का था। गांव के कम से कम 75% जमीन मालिक जमीन की मालिकी गांव को अर्थात ग्राम सभा को समर्पण करे। वह जमीन गांव की कुल जमीन का कम से कम 51% हिस्सा हो। गांव के कम से कम 75% लोग ग्रामदान मान्य करे। जमीन मालिकी गांव को समर्पण करने वाले हर जमीन मालिक की जमीन का 5% हिस्सा भूमिहीनों में बांटा जाए। शेष 95% भूमि पुराने मालिक के कब्जे में ही रहे, वह तथा उसके वारिस उसकी काश्त करते रहेंगे, लेकिन वह बेची न जाएगी। केवल ग्राम सभा की अनुमति से ग्रामदान में शामिल ग्रामवासी को ही हस्तांतरित की जा सकेगी। काश्तकार उपज का 40वां हिस्सा तथा अन्य लोग आय का 30वां हिस्सा नियमित रूप से ग्राम सभा को दे। इसी ग्राम कोष का विनियोग गांव की भलाई तथा विकास के लिए होगा। ग्राम सभा गांव का कारोबार देखेगी, गांव के विकास की योजनाएं बनाकर अमल में लाएगी। वह सर्वसम्मति या सर्वानुमति से निर्णय लेगी। उसे सभी आवश्यक अधिकार होंगे। मैंने सुना कि महाराष्ट्र सरकार कानून बना रही है कि ग्रामदान में 51% के बदले 60% जमीन आए तभी ग्रामदान माना जाएगा। यह सिलेक्ट कमेटी का सुझाव है। मैंने कहा हमारी कोशिश तो 100% होनी चाहिए तभी ग्रामदान माना जाएगा। 60% तो सरकारी तौर पर है। लोगों का ख्याल है कि सरकार 60% मांग रही है और बाबा 51% मांग रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं। बाबा तो 100% ही चाहता है, लेकिन लोगों की अनुकूलता के लिए हमने 51% वाली बात मान्य की है। हमें करना क्या है, आंकड़े थोड़े ही गिनने हैं। हमें देखना है कि गांव में करुणा आई या नहीं। ग्रामदान में लोगों को समझाना होगा कि हमें बांट कर खाना है।
2: विनोबा जी के अनुसार ग्रामदान की योजना सामूहिक जीवन की योजना है जिसमें सारा गांव मिलकर एक साथ सम्मिलित परिवार बनेगा। भावना यह होगी कि हम सब मिलकर एक कुटुंब है। हमारे पूर्वजों ने यहाँ तक कहा था, वसुधैव कुटुंबकम, यानी सारी पृथ्वी एक कुटुंब है। वह भी कुटुंब नहीं कहा, कुटुंबकम कहा। कुटुंबकम यानी छोटा कुटुंब। पूर्वजों ने कहा कि यह वसुधा, यह दुनिया, यह पृथ्वी एक छोटा सा परिवार है। जिस देश में यह शब्द निकला उसी देश में हम एक बहुत ही छोटी चीज रख रहे हैं, वह है ग्राम कुटुंबकम, यानी गांव को एक कुटुंब माना जाए। अभी तो छोटे छोटे परिवार बने हैं, 5-7 व्यक्तियों का एक परिवार होता है। अब इस अणुयुग में, इस विज्ञान युग में इतने छोटे छोटे परिवार कैसे चलेंगे? अणुयुग का अगर लाभ लेना है, विज्ञान युग का अगर लाभ लेना है, तो सबको मिलकर एक बड़ा परिवार बनाना होगा। आज तो छोटे छोटे देश भी नहीं टिक रहे, ऐसे जमाने में छोटे परिवारों की क्या हालत होगी, कह नहीं सकते। इसीलिए ग्रामदान आज के जमाने की मांग है, युग धर्म है।
0: ग्रामदान में प्रत्यक्ष समर्पण करना है, ग्राम सभा को मातृ देवता बनाकर समर्पण करना है और उसके प्रसाद के रूप में हमारे पास जो आएगा उसका सेवन करेंगे, तो यह एक भव्य, दिव्य और रमणीय कल्पना है। पहले नारा था सबई भूमि गोपाल की, नहीं किसी की मालिकी। अब आप भूमि का स्वामित्व ग्राम सभा को सौंप रहे हैं। इस तरह एक नई मालिकी खड़ी नहीं कर रहे। जमीन परमात्मा की है और उसकी तरफ से ग्राम सभा के पास है। मालिकी ग्राम सभा की नहीं है, भगवान की है। गोपाल की सत्ता कायम है, उसकी तरफ से ग्राम सभा काम करेगी।
2: ग्रामदान का अर्थ बताते हुए कहते हैं कि सब लोग स्नेह से मिलकर जियो और सारे गांव को एक परिवार बनाओ। यह ग्रामदान का अर्थ है, आपका प्रेम गांव के दूसरे भाइयों को मिले, उनका आपको मिले। बड़ों के पास जमीन है, छोटों के पास श्रम। बड़ों के पास योजना शक्ति है, छोटों के पास तब करने की ताकत। ऐसी हालत में आप सब एक हो जाए तो सारा गांव एक परिवार बन जाएगा। लोग समझते हैं कि ग्रामदान में जमीन के मालिकों को जमीन देनी है और दूसरों को लेनी है। देने वाले के लिए तो वह धर्म हो गया, लेकिन लेने वाले के लिए क्या? समझने की जरूरत है कि जो धर्म होता है वह सार्वजनिक होता है, वह सबके लिए होता है। वह चंद लोगों के लिए लागू है और चंद लोगों के लिए लागू नहीं, ऐसा नहीं। प्रेम की जिम्मेवारी चंद लोगों पर है और चंद लोगों पर नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। गांव में मजदूर हैं, उनके पास भी देने के लिए दौलत पड़ी है, उनकी श्रम शक्ति, लेकिन वे अपने छोटे से परिवार के लिए ही श्रम शक्ति का दान कर रहे हैं और गांव से उसे चुरा कर रखते हैं। उनको समझाना है कि उनका श्रम तो तब धन्य होगा जब गांव को समर्पित होगा। जमीन के मालिकों की जमीन, श्रम के मालिकों का श्रम, बुद्धिमानों की बुद्धि, संपत्तिवानों की संपत्ति, सब की सब जब गांव को समर्पित होगी तभी सच्चा ग्रामदान होगा, यह ग्रामदान का पूरा अर्थ है। हमें ग्रामदान की पूरी कल्पना समझनी चाहिए। अभी तक तो यह चलता था कि जमीन वाले जमीन दे दे तो ग्रामदान हो गया। मैंने भी शुरू में ऐसा ही चलाया, फिर ध्यान में आया कि यह विचार गलत है। केवल जमीन देने से ग्रामदान नहीं होगा। लोगों ने कल्पना कर रखी है कि कुछ अस्थिमान और कुछ नास्तिमान है, पर एक दिन मेरे ध्यान में आया कि इस दुनिया में कुल के कुल अस्थिमान है। परमेश्वर की कृपा से नास्तिमान दुनिया में कोई नहीं। किसी के पास जमीन है, किसी के पास संपत्ति है, किसी के पास श्रम है, किसी के पास बुद्धि है, किसी के पास प्रेम है, कोई ना कोई चीज हर किसी के पास पड़ी है।
0: ग्राम दान के अंदर सिर्फ जमीन देना ही नहीं है। ग्राम दान का विकसित अर्थ है कि जिसके पास जो है वह ग्राम को समर्पण करना चाहिए। कुछ लोगों का देने का धर्म और कुछ लोगों का लेने का धर्म ऐसा नहीं हो सकता। धर्म वही होता है जो सबको लागू है। करुणा भी सबको लागू है। जिनके पास जमीन है वे अपनी जमीन गांव को देते हैं, तो ग्राम दान हो गया। जो जमीन वाले अब तक अपनी जमीन का उपयोग अपने घर के लिए करते थे, वे सारे गांव को घर समझकर अपनी जमीन का उपयोग गांव के लिए करने को तैयार हुए। यह बहुत अच्छा हुआ। लेकिन इतने से ग्राम दान पूरा नहीं होता। गांव के सम्मतिमान आज तक अपनी संपत्ति का उपयोग घर के लिए करते थे। उन्होंने अपनी संपत्ति का उपयोग गांव के लिए करने का तय किया, तो ग्रामदान बढ़ेगा। फिर भी ग्रामदान पूरा नहीं होगा। गांव के मजदूरों के पास श्रम शक्ति है। आज वे यह शक्ति अपने घर के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर वे अपनी श्रम शक्ति गांव के लिए समर्पण करें, तो ग्रामदान का और एक हिस्सा होगा। यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास क्या नहीं है, बल्कि यही सोचना चाहिए कि मेरे पास देने की क्या चीज है। अगर कोई शख्स दुर्बल है परंतु पढ़ा लिखा है, तो वह अपनी सेवा गांव को समर्पण करे, विद्या गांव को दे।
2: ग्रामदान में तीन तत्व आते हैं। मालिकी विसर्जन, यह करुणा का तत्व है। वह गांव सभा को समर्पण, यह समर्पण का तत्व है। और मिलजुल कर काम, यह सहयोग का तत्व है। तीनों गहरे आध्यात्मिक तत्व है। इन तीनों सामूहिक तत्वों पर चलेंगे तो जो धर्म आज जीर्ण हुए हैं उनका उद्धार होगा। ग्रामदान में हम तीन बातें करना चाहते हैं। पहली बात यह है कि हम छोटे छोटे गांव को एक बड़ा परिवार बनाना चाहते हैं। मैं तो कहूंगा कि जो गांव परिवार नहीं बन सकेगा वह गांव ही नहीं है। गांव इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि उसका परिवार ही बन सके। दूसरी बात यह करनी है कि पैसे की सत्ता को मिटाना है। इसका मतलब यह नहीं कि पैसा कोई बिच्छू है और हम उसे छुएंगे नहीं, परंतु पैसों को मुख्य स्थान नहीं रहेगा। जीवन के बहुत से काम बिना पैसे के चलेंगे। तीसरी बात, हम अपनी जनता में आध्यात्मिक भावना बढ़ाना चाहते हैं। लोग कहते हैं कि जीवन का मान बढ़ाना चाहिए। हम कहते हैं कि चिंतन का मान बढ़ाना चाहिए। यह ठीक है कि जहां जीवन का मान बिल्कुल ही गिरा हुआ है वहां पर उसे ऊपर उठाना ही होगा, परंतु खाना पीना और मजा करना, इसी में मनुष्य का सब सुख है, यह ख्याल बिल्कुल गलत है। उसे हम हटाना चाहते हैं। इसीलिए हम आत्मज्ञान और विज्ञान दोनों को बढ़ाना चाहते हैं। हमें मानवता की भावना और अध्यात्म भावना रखनी होगी।
0: ग्राम स्वराज की बुनियाद पर वे कहते हैं कि ग्रामदान ग्राम स्वराज की बुनियाद है। ग्रामदान के बाद ग्राम स्वराज की स्थापना करने का काम आता है। गांव के लोगों को अपनी इच्छानुसार अलग अलग प्रयोग करने की सहूलियत होनी चाहिए। हमारी निर्दोष योजना लादने की अपेक्षा गांव वालों को गलत प्रयोग करने की आजादी देनी चाहिए। गांधी जी ने स्वराज्य की परिभाषा करते हुए कहा था कि स्वराज्य यानी गलतियां करने का हक। गांव को ऐसा स्वराज्य मिले। ग्रामदान के भिन्न भिन्न चित्र होंगे, लेकिन मुख्य वस्तु उसमें यह है कि उसके जरिए हम सरकारी शक्ति से भिन्न और हिंसा शक्ति के विरुद्ध ऐसी जनशक्ति का निर्माण करेंगे। सामूहिक जीवन के लिए लोगों को प्रवृत्त करना है। सबके पास देने की चीज है। अपने पास जो कुछ है उसे समाज को समर्पित करने की भावना का ही नाम ग्राम स्वराज्य है। ग्राम स्वराज्य का अर्थ है गांव में बुद्धि शक्ति तालीम आदि जो कुछ भी साधन है उन्हीं को मुख्य पूंजी समझकर उनके आधार पर गांव का निर्माण करना। बाहर से मदद मिलती है तो अच्छा है, किंतु उसी की आशा रखकर काम करने से गांव की ताकत कभी विकसित नहीं होगी। आज हमारे गांव में साधन कम हो, हमारे नसीब में गरीबी हो, तो उसे भी हम बांट ले।
2: विनोबा जी बताते हैं कि श्री एस के डे आए थे, केंद्रीय मंत्री है, उनके जिम्मे भारत सरकार का कम्युनिटी डेवलपमेंट का काम है। सज्जन व्यक्ति हैं, पहले भी मिले हैं, चर्चा की है, लेकिन इस समय चर्चा नहीं करनी पड़ी। ग्रामदानी गांव देखने गए थे, यहाँ मदुराई जिले में समझ बूझ कर ग्रामदान हुए हैं। केवल श्रद्धा से नहीं, डे साहब ने एक ग्रामदानी गांव में जाकर पूछा, क्या समझे हैं आप लोग, क्या आप भूमिहीनों को भूमि देंगे? लोगों ने उत्तर दिया, इतना नहीं समझे होते कि भूमिहीनों को भूमि देना है तो ग्रामदान क्यों करते, सबको जमीन मिलनी चाहिए। यह उत्तर सुना तो उनके आनंद का पार नहीं रहा। उसकी दो तीन दिन बाद मिले तो मुझे बोलने का मौका ही नहीं मिला, वे ही बोलते रहे। मुझे जो समझाना था वही वे बोलने लगे। उन्होंने कहा कि कम्युनिटी प्रोजेक्ट में ऊपर ऊपर काम होता है, जहां कम्युनिटी ही नहीं वहां कम्युनिटी के डेवलपमेंट की योजना क्या चलेगी, जहां ग्रामदान हुआ वहां कम्युनिटी बनती है, तो वास्तव में कम्युनिटी डेवलपमेंट का काम तो ऐसे ग्रामदानी गांव में ही हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि हम चाहते हैं कि गरीबों की मदद हो, पर आज यह हालत है कि वही मदद ले सकते हैं जो अपनी शक्ति से खींच सकते हैं। गरीबों में शक्ति नहीं है कि मदद अपने लिए खींच सके, इसीलिए हमारा कम्युनिटी प्रोजेक्ट हवा में है। जहां कम्युनिटी ही नहीं वहां कम्युनिटी प्रोजेक्ट कहां से होगा, जहां ग्रामदान होते हैं वहां बड़ी भारी कम्युनिटी बनती है। यह विचार डे साहब ने रखा।
0: ग्राम भावना तो बनी, पर उसके निर्माण पर चिंता व्यक्त करते हुए जब उनसे पूछा गया कि ग्रामदान में निर्माण किस तरह हो, हमने बताया यह जो निर्माण है वह अनादिकाल से आज तक चल रहा है, लेकिन सवाल यह है कि ग्राम निर्माण में मूल तत्व क्या होना चाहिए। मूल तत्व यह है कि उसमें ग्राम खुद हो। आज तो खुद ग्राम ही नहीं है, गांव बनाना ही ग्राम निर्माण है। आज परिवार है, ग्राम है ही नहीं। एक ग्राम में अनेक परिवार होते हैं। उन सब परिवारों ने मिल करके अगर तय किया कि हम सब मिलकर गांव का एक परिवार बनाएं, तो वह ग्राम निर्माण होगा। लोग इसको ग्रामदान कहते हैं। अभी तक गांव का नाम ही था, गांव का रूप नहीं था। गांव में अलग अलग अनेक परिवार होते हैं, सब एक गांव में होते हुए भी अकेले अकेले पड़े हैं, सब मिल करके एक नहीं है। सचमुच तो गांव में सब मिलकर एक है, सबका उद्देश्य एक है, सबकी भावना एक है, ऐसा होना चाहिए। यह भावना गांव की बन गई तो मेरी राय में ग्राम निर्माण हो गया। ग्राम निर्माण हुआ यानी ग्राम हुआ, गांव बना। ग्राम निर्माण होने के बाद सुखी ग्राम कैसे बनाएंगे यह सोचना है। यह गांव वालों की अक्ल पर निर्भर है। अब सोचेंगे कि उस गांव में किस तरह से सुख की प्राप्ति हो सकती है और किस तरह दुख का परिहार हो सकता है। लेकिन एक बार गांव के बारे में मिलजुल कर सोचने लगे तो ग्राम निर्माण हो गया। गांव सुखी होगा अपनी बुद्धि शक्ति और परमेश्वर की कृपा के अनुसार। सुखी ग्राम निर्माण एक बात है और ग्राम निर्माण दूसरी बात है। सुखी ग्राम निर्माण का काम तो अनंत काल तक जारी रहेगा। यह जो ग्रामदान का विचार है वह सहजीवन का विचार है। मालिकी मिटाना, जो भूमिहीन है, कम जमीन वाले हैं, उनको जमीन देना और गांव का एक परिवार बनाना, इसमें मनुष्य की आध्यात्मिक साधना का अच्छी तरह से आरंभ हो सकता है और उसमें उसकी कसौटी हो सकती है। ग्रामदान में सामूहिक जीवन का आरंभ होगा, ग्रामदान से भौतिक जीवन सुखी होगा, यह बात साफ है। लेकिन इससे ज्यादा यह बात साफ है कि ग्रामदान से परमार्थ के लिए साफ बुनियाद बनती है।
2: विनोबा जी कहते हैं कि यह भूदान ग्रामदान हमारी दृष्टि से आत्मदर्शन की खोज है। हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि हम अपने को एक देह में सीमित समझते हैं। संसार में पड़े हुए लोगों को भी और पारमार्थिक साधना करने वाले साधकों की भी यही दशा है। संसारासक्त मनुष्य अपनी ही उन्नति चाहते हैं और परमार्थ में लगे हुए भी अपनी ही मुक्ति चाहते हैं। एक अपनी देह का सुख चाहता है तो दूसरा अपने देह का चित्त की शांति चाहता है। हम इन दोनों को गलत समझते हैं, कारण दोनों अपने को इसी देह में सीमित समझते हैं। मान लीजिए उसके चित्त के विकार शांत है और पड़ोसी के शांत नहीं, तो साधक को उसकी चिंता नहीं, वह अपने चित्त की ही शांति से संतुष्ट है। हम समझते हैं कि यह गलत है। जब तक हम अपने को एक देह में सीमित समझने की गलती से मुक्त नहीं होगे, तब तक हमारे लिए आत्मा का दर्शन दूर है। आत्मा किसी एक देह में नहीं, आत्मा अनेक देहों में है, उनमें से यह हमारी देह एक है। यह व्यापक संबंध जब ध्यान में आएगा तभी आत्मा का दर्शन होगा। उसका एक छोटा सा प्रयोग ग्रामदान में होता है। मेरा जो कुछ है वह सिर्फ मेरे लिए नहीं, सारे गांव के लिए है। यह आत्मदर्शन का एक सबसे छोटा और पहला सबक है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी दृष्टि में ग्रामदान आंदोलन आत्मा की खोज ही है।
0: अक्सर कहा जाता है कि घर द्वार सब कुछ छोड़ चलोगे तो यह मैं और मेरा छूटेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इस तरह भाग जाने से मनुष्य को मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति की युक्ति तो यह है कि हम अपना घर छोटा न समझे। सारा गांव हमारा घर है और हमारा जो छोटा घर हम मानते हैं वह भी सबका है, ऐसा समझे। मैं किसी का नहीं और कोई मेरा नहीं, ऐसी बातें करने से मनुष्य मुक्त नहीं होता। मनुष्य तो मुक्त तब होता है जब वह समझता है कि मैं सबका हूँ और सब मेरे हैं। अभी तक हिंदुस्तान में जिन्होंने मुक्ति के लिए कोशिश की, उन्होंने ऐसी ही कोशिश की कि मेरा कुछ भी नहीं है, इसलिए सब छोड़ कर जाना पड़ता था। लेकिन इससे जल्दी मुक्ति नहीं मिलती। मनुष्य सब छोड़ कर जाता है तो आखिर एक लंगोटी पहनना ही है, तो उसकी सारी आसक्ति उस लंगोटी में रह जाती है। मेरा मेरा चलता है तो मनुष्य आसक्त बन जाता है, कैदी बन जाता है। लेकिन मनुष्य मैं और मेरा यह सब छोड़ देगा और कहेगा कि यह सब हमारा है, मेरा कुछ नहीं है, तो वह जल्दी मुक्त हो जाएगा। इसलिए हमारे पास जो कुछ है वह सारा गांव का है, मैं भी गांव का हूँ और गांव मेरा है। ऐसी भावना जब बनती है तब मनुष्य आसानी से मुक्त होता है। ग्रामदान का यह एक बहुत बड़ा लाभ है। ग्रामदान एक अत्यंत परिशुद्ध धर्म विचार है। हम यह भी कहना चाहते हैं कि यह एक अत्यंत आधुनिक अर्थशास्त्रीय विचार है, अत्यंत परिशुद्ध वैज्ञानिक विचार है। यानी इसमें धर्म विचार, अर्थ विचार और विज्ञान विचार तीनों इकट्ठे हुए हैं। धर्म कहता है कि किसी एक को भी दुख हो तो उसके दुख में सबको हिस्सा लेना चाहिए, इसी को करुणा और प्रेम कहते हैं। यही परमेश्वर का रूप है। ग्रामदान के काम में करुणा प्रत्यक्ष प्रकट होती है। ग्रामदान से आपको अपने गांव के दुखी लोगों के दुख में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। यह है ग्रामदान का धर्म विचार। आज गांव में जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं। कुछ के पास बहुत ज्यादा जमीन है, कुछ के पास कम है, तो कुछ के पास कुछ भी नहीं। क्या किसी खेत में कुछ टीले और कुछ गड्ढे हो तो वहाँ अच्छी फसल आएगी? इसी तरह आज समाज में संपत्ति के कुछ टीले हैं और कुछ बिल्कुल भूखे दरिद्री गड्ढे। ऐसे समाज में अच्छा अर्थोत्पादन नहीं हो सकता। जिस समाज में ऐसे ऊंचे टीले और गड्ढे न होंगे, समता और सहयोग का भाव आया होगा, वही अर्थोत्पत्ति बढ़ेगी। समता का यह अर्थ नहीं कि बिल्कुल ही समान हो जाए। अंगुलियों में कुछ छोटी बड़ी जरूर होती है, फिर भी वे करीब करीब समान हैं। हर एक में अपनी अलग अलग ताकत है और सब मिलजुल कर काम करती है, इसीलिए उनसे हजारों काम बनते हैं। इसी तरह सब सहयोग करते हैं तभी कुछ काम बनते हैं।
2: विनोबा जी से प्रश्न करते हुए शंकर देव कहते हैं कि लोकशाही के विकास में जो चीज यूरोप और रशिया में सफल नहीं हो पाई, वह ग्रामदान में सर्वोदय रिपब्लिक में सफल हो सकती है। विनोबा जी कहते हैं, मुझे भी लगता है कि उसमें वह क्षमता पोटेंशियल पड़ी है, चाहे उसको सिद्ध करना पुरुषार्थ की बात हो। ग्रामदान में लोकशाही का पूर्ण विकास करने की क्षमता है, प्रत्यक्ष लोकशाही इसमें से खड़ी हो सकती है। आज तो सिर्फ प्रातिनिधिक लोकशाही चलती है। ग्रामदान में बहुत सारी क्षमता है। अब इस प्रक्रिया को सांगोपांग रूप देना वैज्ञानिकों का, संशोधकों का काम है। ग्रामदान के बाद क्या किया जाए, किस तरह आगे बढ़ा जाए, कैसी कैसी योजनाएं बने जिससे ग्रामदान की सारी संभावनाएं चरितार्थ हो, इसका संशोधन होना चाहिए। शंकर राव कहते हैं, लोकशाही का अर्थ है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, जनता के लिए जनता द्वारा चलाया हुआ जनता का राज्य। लोकशाही का परिणाम वर्गविहीन शासन रहित समाज निर्माण में आना चाहिए। सब लोग मिलकर अपना जीवन क्रम बनाए, जीवन संपन्नता के लिए प्रयत्न करें। कुछ लोग उनके प्रतिनिधि बनकर यह सारा न सोचे, बल्कि लोग खुद सोचे, लोग खुद अपने जीवन के बारे में सोचे, खुद उसका अमल करें। लोकशाही के इस मूल अर्थ के लिए ग्रामदान में अनुकूलता दिखती है, क्योंकि उसमें लोगों के हित विरोध का निराकरण होता है। जब तक लोगों के हित परस्पर विरोधी हैं, तब तक लोग साथ मिलकर जीवन के बारे में सोचें, यह संभव नहीं। ग्रामदान में हित विरोध दूर करके सबका हित एक होने की भावना निर्माण करने की प्रक्रिया सुलभ दिखती है। हित एक है तो ही विचार और आचार में सहज संपूर्ण सहकार शक्य है। इसीलिए वास्तविक लोकशाही को विशुद्ध और मजबूत चट्टान की बुनियाद ग्रामदान द्वारा मिल सकती है, ऐसा मान सकते हैं। विनोबा जी कहते हैं, ठीक है, अन्यथा लोकशाही अल्पमत बहुमत की समस्या खड़ी करने वाली, झगड़े निर्माण करने वाली संस्था ही बन जाएगी। लोकशाही का वास्तविक अर्थ यही है कि सब एक साथ बैठे, सोचे और साथ मिलकर निर्णय करे। शंकर राव कहते हैं, अल्पमत बहुमत का प्रश्न तो पश्चिम की लोकशाही के विशिष्ट प्रकार के विकास और कार्य पद्धति के कारण आया है। वह लोकशाही का शुद्ध नहीं, विकृत रूप है। ग्रीस के नगर राज्य में यही प्रश्न नहीं था, किंतु वहां की नगर सभा में नागरिक ही बैठते थे, गुलामों को स्थान नहीं था। लोकशाही के लिए आवश्यक ऐसी हित संबंधों के समानता की इकाई ग्रामदान में मिलती है। ग्रामदान में ग्राम सभा की इकाई पर शुद्ध लोकशाही की रचना हो सकती है। ग्रामदान का यह एक मुख्य अंग लोगों के सामने आना आवश्यक है। लोगों को अगर अनुभूति होती है कि हम जो कर रहे हैं वह लोकशाही को मजबूत करने वाला कदम है, तो ग्रामदान द्वारा वास्तविक लोकशाही या लोकराज्य का उदय होगा। ग्रामदान का यह बुनियादी विचार विश्वव्यापक बन सकता है। विनोबा जी कहते हैं, यह सच ही है। मैंने एक बार कहा था, अगर हम इस संभावना को, इस पोटेंशियल को वास्तव में दिखा सके, तो हमारे इस विशिष्ट प्रयोग को देखने, उसका अध्ययन करने बाहर से लोग आएंगे।
0: क्राइस्ट ने कहा था, आई एम नॉट कम टू डिस्ट्रॉय बट टू फुलफिल, यानी कि मैं नाश करने नहीं बल्कि पूर्णता लाने आया हूँ। उसी भाषा में मैं सोचता हूँ कि हम नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद को डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं निकले, फुलफिल करने के लिए आए हैं। ग्रामदान फुलफिलमेंट यानी कि पूर्णता है। विनोबा जी इसे विश्व शांति के लिए शस्त्र मानते हैं। वे कहते हैं कि ग्राम स्वराज का यह कार्यक्रम संकट मोचन है। हम मन में आशा रखें, पूर्ण शांति की ओर हमारी तैयारी हो, पूर्ण संकट का सामना करने की। संकट की अपेक्षा न करें, पर उसकी उपेक्षा भी न करें। प्रत्येक भूदान पुत्र और ग्रामदान पत्र विश्व शांति का प्रतीक है। जिससे विश्व में अशांति होती है उससे यह उल्टी प्रक्रिया है। जिसे हम निजी वस्तु मानते हैं वह निजी न होकर समाज की है। समाज को देने के बाद जो शेष रहेगा उसका हमें उपभोग करना है। यह वृत्ति हम लोगों में बैठ जानी चाहिए। दुनिया की आज की अशांति अधिकतर आर्थिक कारणों से है। तुलसी दास जी कहते हैं, जेन के न विधि दिन्हे दान, ग्रामदान में त्याग है, समर्पण है, भूदान में दान है, दोनों दुनिया के लिए श्रेयस्कर है। ग्रामदान का कार्य सफल हो तो दुनिया के शांति के शस्त्रागार में एक बड़ा शस्त्र ही दाखिल होगा। हिंसा के शस्त्रागार में ऊंचे से ऊंचे शस्त्र बन रहे हैं, वही प्रक्रिया शांति के शस्त्रागार में होनी चाहिए। उससे दुनिया की ताकत और आशा बढ़ेगी। हमने बहुत बार कहा है कि भूदान विश्व शांति के लिए वोट है, लेकिन जब से ग्रामदान शुरू हुआ है तब से यह और आगे बढ़ा है। हम कहना चाहते हैं कि भूदान तो विश्व शांति के लिए वोट है, परंतु ग्रामदान विश्व शांति के लिए शस्त्र है। ग्राम स्वराज्य अगर सफल हुआ, 5 लाख गांवों में ग्राम सभा बनी और ग्रामीण जनता की ओर से लोग चुने गए, और जैसा मैं बार बार कहता हूँ उस प्रकार दल मुक्त सरकार और सरकार मुक्त जनता हुई, तो लोकमत से हम एक तरफा सेना विसर्जित कर सकते हैं और इसका असर दुनिया पर पड़ेगा।
2: अंत में कहते हैं कि दुनिया आज अन्याय, उत्पीड़न और शोषण से त्रस्त है। सत्ता के शिकंजे में उसकी सांस रुंधी जा रही है। युद्ध और शस्त्रास्त्रों के अभिशाप से वह पीड़ित है। विज्ञान की जो शक्ति उसके लिए वरदान रूप बननी चाहती थी,

0: तथा केंद्रीय संपत्ति सारी मानव जाति को अपना गुलाम बना लेगी। इसीलिए उन्होंने ग्राम स्वराज्य का उद्घोष किया। उन्होंने कहा था कि भारत को अपना विकास यदि अहिंसा अर्थात अशोषण और न्याय की दिशा में करना हो तो बहुत सारी चीजों का विकेंद्रीकरण करना पड़ेगा। उसके बदले यदि केंद्रीकरण किया गया तो उसे कायम रखने और उसकी रक्षा करने के लिए हिंसा का आश्रय लेना अनिवार्य हो जाएगा। अहिंसक समाज रचना तो स्वाश्रयी गांवों के आधार पर ही खड़ी की जा सकती है। विकेंद्रीकरण और ग्राम स्वराज्य का यह विचार मानव जाति के लिए गांधी जी की अनोखी देन है। समस्त मानवीय गतिविधियों का केंद्रीकरण विज्ञान का एक अभिशाप है। गांधी हमारी युग की इस विभिषिका से छूटने के मानव जाति के प्रयास के प्रतीक स्वरूप थे। गांधी एक व्यक्ति नहीं लेकिन अहिंसा तत्व के प्रतीक थे।
1: श्रोताओं, आचार्य विनोबा भावे की जीवनी पर आधारित इस रेडियो धारावाहिक में आपने सुने ग्रामदान योजना के बारे में विनोबा जी के विचार।
2: यह कार्यक्रम रेडियो एमगिरी 90.4 FM द्वारा प्रस्तुत किया गया।